0: Indranath Mahato's hunger strike has entered its 11th day. Mahato has asserted that his hunger strike will continue. He has also warned that the government, that the protests will intensify if the students' demands are not met. In fact, he has also demanded a probe into the police action taken against the protesters. He has penned a letter from Ranchi's Sadar Hospital saying that while his body may be weak, his resolve to fight for justice will never weaken. The BJP, meanwhile, slammed the government over former JPSC chairman L. Kiangte and termed his arrest by the state CID an eyewash. The party also alleged that Kiangte took bribes and helped Chief Minister Hemant Soren sell jobs in the state. Chief Minister Soren has hit back, accusing the opposition of politicizing the issue and also misleading the protesting students.
1: विपक्ष के साथियों को कुछ बात बताना चाहता हूं। इनको बहुत आशाएं हैं हमसे भी राज्य की जनता को तो आशा है और उनके अनुरूप हम काम भी कर रहे हैं लेकिन इनकी जो आशाएं हैं और इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो इतनी अधिक है कि इसको पूरा करते करते कितना जन्म लेना पड़ेगा इसका तो अंदाजा मैं नहीं कर सकता लेकिन निश्चित रूप से राज्य की जनता को आश्वस्त करने में हम लोग सक्षम है इनके सहारे की आवश्यकता नहीं
2: सवाल है अगर यहाँ के लोगों को ही पैसा दे करके अगर आपने नौकरी दिया है तो ये भी तो गलत है ना यानी आप जो बच्चे मेरिट थे जो बच्चे माड़ भात खा करके तैयारी किया था कि हम पास करेंगे तो हमें सरकारी जॉब मिल जाएगा उनके माँ बाप को भी बड़ी उम्मीदें थी लेकिन आपने क्या किया जिनके पास 20 लाख था 40 लाख था 50 लाख था करोड़ था उनसे पैसा लेकर के आपने उनको दिया
3: बिल्कुल अभी हम लोग जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं जितना जल्द हो सके हमारी मांगे मानिए हम लोग तटस्थ हैं अब ये आंदोलन को और आगे नहीं बढ़ने दीजिए अगर हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो ये आंदोलन छात्र आंदोलन से जन आंदोलन की ओर जाएगी और आपको बता दें कि गार्जियन खुद नोटिस कर रहे हैं उनको भी लग रहा है कि 17-18 दिन से मेरा बच्चा जो है सो वहाँ है कैसा ना कैसा खाना पीना खा रहा है अच्छा से सो नहीं पा रहा है खून उन लोग का भी खोल रहा है हम ही लोग उन लोग को दबा के अभी रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है इसे जन आंदोलन नहीं बने
0: The protests in Jharkhand reflect the anger and frustration of the youth over lack of opportunities. In fact, India Today's Ashutosh Mishra met young women who are fighting big odds to not just survive, but also keep their dreams alive. Listen in.
4: Every time there is a jam, it happens in this way that it doesn't happen for 1-2 numbers. You can see that if it happens in this way, if it happens in this way, then how will we work with the people who are working? You can see that.
5: यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चला
4: हम खुद कमाई करते दूसरा के घर में खाना बनाने जाते कहीं दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के कि हमको 6-8 घंटा टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके मेहनत कर सके अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए अभी मेरा बात से बहुत सारा मेरा आदिवासी भाई बहन को बुरा लगेगा लेकिन देखिए सब नाचने गाने में सब कोई आगे रहता है लेकिन सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता है कल देखिए आदिवासी दिवस मनाया गया 9 अगस्त को मेरा
5: भाई क्या हुआ बेटा आप क्यों रो रहे हो क्या हुआ क्या हुआ अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना आपने तो नहीं दिया
4: मेरे ही पे तैयारी करते हैं हम इसको समझाए अभी तैयारी करने के लिए इसको मजबूर किए
5: आपकी बहन है छोटी
4: छोटी बहन नहीं है मेरी फ्रेंड है हम जहाँ तैयारी करते ही आई ना तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे इसको इसीलिए
0: In fact, now actor and BJP MP Kangna Ranaut has also come out in support of actor Piyush Mishra in his war of words with veteran actor Nasiruddin Shah over the Jharkhand protest. The BJP MP launched a sharp attack on Nasiruddin Shah in an Instagram post, which has now gone viral. In her trademark bombastic style, Kangna Ranaut called the veteran actor a fox and accused him of betraying India by supporting Pakistan. The controversy erupted after Piyush Mishra criticized Nasiruddin Shah over his comments about Bollywood celebrities remaining silent during student protests. The gangs of Versipur actor Piyush Mishra questioned Nasiruddin's own silence on the Jharkhand student protest. And in fact, he also challenged the actor over his earlier remarks. In an interview to a news outlet, Nasiruddin Shah had slammed top film stars for their silence on the CJP protest and called them dogs.
6: अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खोल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा।
0: And let's also listen into what BJP MP Kangna Ranaut had said earlier, commenting about the CJP-led protest in the national capital.
7: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।

सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़े। रील का जमाना है,

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: द फैक्ट इज दैट अ नंबर ऑफ यंग पीपल आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द सिस्टम एंड एक्सप्रेसिंग द एंगर एंड लुकिंग फॉर पोटेंशियली न्यू ऑल्टरनेटिव्स. And thereby there's a certain tiredness with traditional politics. People feel strongly that the system is not delivering. So that's the message, I think, and thereby they're looking for new options.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज तीन बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे और कल दोपहर 3 बजे तक, हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है।
2: And remember, that's the first response coming in from Union Home Minister Amit Shah, who has once again urged the opposition to allow the House to function, where he has appealed to the opposition through all news channels to say, I am ready to debate. That's the statement that has come in from him, where he said that people must know who is actually fleeing this debate. Please allow the House to function. Submit a letter to the Speaker by 2 p.m. this afternoon. I'm putting out this appeal to the opposition through all the TV channels. I'll sit myself. I will answer every question. I'm ready to speak on every subject that the opposition picks up, every issue that they are seeking answers from me. We will do it in the manner as per protocol of the House. Let me take this to my colleague Piyush Mishra, joining us on the broadcast. Piyush, big development given the protest versus counter-protest versus the drama that has been happening through all these days, for Union Home Minister Amit Shah to say that I am ready to answer every question but allow the House to function.
3: Well, Swesha, that's a big and direct message to opposition, where Union Home Minister Amit Shah has asked him opposition to give in writing to Lok Sabha Speaker by 2 p.m. Soon after that, the government will initiate the discussion from 3 p.m. and Home Minister Amit Shah will respond tomorrow at 3 p.m. So a big and a direct message from Home Minister Amit Shah to opposition that yes, we are ready for discussion. Yesterday, the government sources had indicated that the government did not want only one statement from Home Minister Amit Shah, but a detailed discussion on all the aspects of the students' protest. Home Minister Amit Shah has also made it very, very clear that I will give statement, I will reply to all the concerns tomorrow 3 p.m. I will give a detailed statement and this is somewhere, this is somewhere indicating towards the kind of demand which was also there from the opposition. Today in the morning when we saw the protest from opposition, we did not see any kind of banner from the opposition where they used the banner like Amit Shah Jawab Do, because government is ready. Government is now making it very clear that we are ready to not only reply but also to let the parliament function, and we are ready for a proper discussion. Given the fact that the biggest condition is the opposition should not disrupt the house and let the house function properly. So that's a big message coming in from Home Minister Amit Shah to the opposition. Give us in writing by 2 p.m. We will initiate the discussion from 3 p.m. today, and Home Minister Amit Shah will respond tomorrow at 3 p.m. So that's a big message to opposition. It remains to be seen how the Congress party is going to look into this big message coming in from Home Minister Amit Shah. Earlier, Kiran Rijiju had also requested opposition to come on the floor of the House, let the parliament function, Home Minister Amit Shah will respond. But when opposition did not listen to the government's request, now Home Minister Amit Shah himself has come out and he has now sent out a clear message to the entire opposition saying that you give us in writing by 2 p.m. and from 3 p.m. the discussions will begin. And that was the biggest demand of opposition. Suresh, you would remember that since July 20 protest after the resignation of Union Education Minister, former Union Education Minister Dharmendra Pradhan, opposition changed its goalpost towards the statement from Home Minister Amit Shah. And when the government is ready to give statement, and Home Minister Amit Shah is himself ready to not only give statement but also for a detailed discussion, now opposition today also protested demanding answers from the government. Now it remains to be seen how things are further going to pan out, but that's a big outreach to opposition by Home Minister Amit Shah, asking them, give us in writing by 2 p.m. We will initiate discussion from 3 p.m.
2: Piyush, please stay on with us. Let's listen into that response yet again, after which I come back to you.
1: देखिए सबसे पहले तो लापता भाग गए भगोड़े इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं मेरी चैम्बर में बैठा हूं चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में तो कोई जाकर क्या करेगा जहां तक चर्चा का सवाल है सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए पहले तो ये यही मांग कर रहे थे हमने हाँ बोल दिया मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते अब जनता तय करे कौन भाग रहा है आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार है मैं सदन में ही बैठूंगा सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है संसद वो चलने दे बस आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं तरीके बने हैं अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है, आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है।
2: Piyush, I want to come back to you because here the Union Home Minister has clearly thrown the ball in the opposition's court to say now they have to decide whether they will debate or not, because we are ready for debate. Every question will be answered. Submit that letter to the Speaker by 2 p.m. Tomorrow, 3 p.m., I will answer every question, but allow the House to function.
3: Well, that's right, Suresha. Remember that since the day one of monsoon session, there has been continuous disruption. First, on the issue of Dharmendra Pradhan, opposition wanted resignation of Dharmendra Pradhan. That happened. After that, the opposition demanded that Home Minister Amit Shah should make a statement, to which also the government got agreed. And day before yesterday, we also saw a statement coming in from Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, where he not only mentioned about a detailed statement from Home Minister Amit Shah, but also detailed discussion on all the students' protests at Jantar Mantar, at Jhar, at also there at Jhar. Kind of, apart from that, in protest in Punjab and in various parts of the country. But despite continuous requests from the government to the opposition, we are still seeing log jam continues there in Lok Sabha. Today also, when at 11 a.m. House resumed, we saw continuous smoking, the kind of disruption which we are witnessing the last few days, that was continued in Lok Sabha. And because of that, the Lok Sabha had to be adjourned till 2 p.m. Now what is happening, that Home Minister Amit Shah himself has to come out. He is now requesting opposition to take part in debate. He is making it very, very clear that we are not only going to make statements, but we are for the detailed discussion.
4: That's the correct thing to do. The entire Tamil Nadu is one on that, except the lone BJP member.
5: He said the center to freeze the Lok Sabha is strength only 543.
4: Whether the Lok Sabha, correct, that is a correct demand. The Lok Sabha should be frozen at 543. Otherwise, it will become like the Chinese parliament. It will become a public meeting. It won't be a house. Be that as it may, the proportion of the southern states of Tamil Nadu is 7.18. The proportion of the southern states, including Tamil Nadu, should be frozen. They cannot be punished for implementing family planning for the last 25 years.
5: The government is ready to send the FCRA bill to JPC.
4: They should not only send it to the JPC, they should withdraw the bill. But at least it is better than passing the bill in the DIN. They have referred it to the JPC. Congress party will oppose the bill in the JPC, and eventually the bill must be dropped. This is an unnecessary bill, a mischievous bill intended to target the minorities.
6: Thank you. Will you say about something about the Jharkhand issue? Because a lot of...
4: No, I have... Jharkhand issue, Mr. Rahul Gandhi and several others, including me, have condemned the police action. I said, shame on the police and their political masters. It should not have happened, but it has happened, and therefore we condemn it.
5: So what do you think? There is no need of delimitation bill, what government wants to bring in house?
4: There is no need for that delimitation bill. The existing representation of states must not be reduced. Why are we being punished? Why are the states which have faithfully and conscientiously implemented the family planning program?
2: And we'll keep cutting into live responses as and when they come. But the focus is on the statement that has been made by Union Home Minister Amit Shah. The first response that has come in, where he said, we are ready to debate. The opposition has to allow the House to function. We will answer every question. Let's listen into that statement once again.
1: देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है।
7: इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन, वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग, एंड व्हेन आई से वी आई मीन द यंगर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री, हु शॉट दोज स्टूडेंट्स, हु गेव द ऑर्डर टू शूट दोज स्टूडेंट्स, हु ब्लाइंडेड वन ऑफ द स्टूडेंट्स, हु शॉट वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ईयर, हु गेव द ऑर्डर टू बीट द स्टूडेंट्स विद लाठीज विद नेल्स, हु गेव दैट ऑर्डर। दैट ऑर्डर was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. राइट, दिस इज अब आपने मुझे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करती हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल दीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप? उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए
8: सर उनका जो।
7: एक सेकेंड, द क्वेश्चन इज नॉट वेदर मिस्टर अमित शाह कम्स एंड ओपिनियंस, वी डोंट केयर व्हाट ही हैज टू से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। right? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू।
2: All right, so that's the latest response from Rahul Gandhi, who said that the Home Minister must answer on police excesses that were used during that protest. Listen in.
9: हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. Right? This is a... आपने मुझसे सवाल पूछा. आप उनको interrupt करते हैं? नहीं नहीं जब वो बोलते हैं आप सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं.
8: नहीं
9: मेरा जवाब बोल दीजिए. आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं. क्यों नहीं करते आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप. उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए.
10: सर उनका जो
9: एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines, we don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 din ke liye, 20 din ke liye gayab ho gaye. Yahan baithe the, gaadi aati thi, jaati thi, 30 gaadiyan unke, student should know this, 30 cars around Amit Shah. Unke ghar ke saamne jaiye, wahan pe matlab 1000 police wale khade hue hain ki koi bachcha na aa jaye. Right? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई. अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है. अमित शाह हैज नो करेज. द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज. ही कैन नॉट कम टू द हाउस. थैंक यू.
2: And let me take this to my colleague Aishwarya Paliwal now joining us on the broadcast. Aishwarya, Rahul Gandhi saying that Union Home Minister Amit Shah must answer on police brutality, on who ordered the assault. Amit Shah has said that he is willing to answer every question, but it cannot happen through a statement. All right, so that's the full statement that has come in from Rahul Gandhi, and we also heard from Union Home Minister Amit Shah. I take this back to my colleague Aishwarya Paliwal, who's with us on the broadcast. Aishwarya, as I was saying, Rahul Gandhi is demanding two straight answers, one on police brutality and the other on who ordered the assault. Union Home Minister Amit Shah has said, I'm willing to answer.

0: per the protocol of the house. So only when you allow the house to function can I do that. Where Rahul Gandhi is also saying, we're not interested in what he has to say.
1: Well, you know, let me tell you, Susha, what exactly is happening here inside the parliament. Since day one, we have all the top opposition parties. Those parties, however, are, you know, together. Yes, they are protesting, but they also want the house to function, except the Congress party. The Congress party is very, very clear. They are saying they have one specific question. They want the answer only to that question, and that question is, who ordered those policemen to fire pellet guns on protesting students? They are saying they do not want to listen to the entire lecture of Home Minister Amit Shah. The government, the NDA, on the other side, is saying that if you want to debate, a full-fledged debate, even if you want it for 10 hours, 12 hours, even 18 hours, we are willing to do that. In that debate, we will give you the answer that you are seeking. We will tell you the entire chronology of what happened on the 20th of July. So this is how you are seeing things being panned out. But yes, it seems like the tug of war will still continue. The stalemate continues. You know, just a couple of minutes ago, we heard Home Minister Amit Shah very clearly saying that I am ready with my answer. The word that you have been using for me is that I am not available in the parliament. I ran away. Bhagoda, that's the word that we have seen being used on various posters also, Swesha. The Home Minister taking objection to the kind of language that has been used against him and saying that this is something which is not correct. You want me to answer, I will give you an answer. You want a 10-hour debate, you want a 12-hour debate. He, in fact, has also given time to the opposition till 3 p.m. today, because tomorrow is the last day of the monsoon session. The ball now truly is in the opposition's court, Swesha.
0: Oh, yes, absolutely. Ashwara, I request you to stay on with us. We'll once again listen into that statement that has been made by Union Home Minister Amit Shah, after which I come back to you.
2: देखिए सबसे पहले तो लापता भाग गए भगोड़े इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं मेरी चैम्बर में बैठा हूं चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में तो कोई जाकर क्या करेगा जहां तक चर्चा का सवाल है सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए पहले तो ये यही मांग कर रहे थे हमने हाँ बोल दिया मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते अब जनता तय करे कौन भाग रहा है आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं मैं सदन में ही बैठूंगा सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है संसद वो चलने दे बस आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं तरीके बने हैं अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है शायद आपके पद्धति में होगा मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है संसद में एट लेंथ चर्चा होती है आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं मैं खुद बैठूंगा हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है
0: Ashwara, I want to come back to you because the question now is this really about optics or seeking answers? Where the person you're questioning is saying that I am willing

0: सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आप चर्चा से भागो मत।
1: धन्यवाद। मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा, ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको।
2: ये सब द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गण पूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें, और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उप संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।
3: श्री केसी वेणुगोपाल जी, व्हाट डू यू वांट टू से? बट इफ आई एम अलाउंग यू टू केसी वेणुगोपाल जी, ना इफ आई एम अलाउंग टू केसी वेणुगोपाल जी, तो आप
4: जस्ट नाउ वी गॉट ए
3: मैं उनको अलाउ भी कर रहा हूं, आप सदन में खाली करें
4: सर। जस्ट नाउ वी गॉट एन इंफॉर्मेशन, द बिल इज सर्कुलेटेड फॉर मूविंग अ रेजोल्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन एफसीआरए in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, ours is getting complete donation from the foreign countries. On one side, ours is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal bill.
3: श्री किरण रिजिजू, श्री किरण रिजिजू,
5: केसी वेणुगोपाल जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं।
3: श्री किरण रिजिजू,
5: और ये कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि ये जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने भी कहा, कुछ प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब आप महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहाँ बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना मत रख सकते हैं। जेपीसी में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुलाकर के आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे जब जेपीसी भेजते हैं। जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने के जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है, कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है।
3: एवरीडे यू आर डिमांडिंग, एवरीडे यू आर डिमांडिंग दैट दिस शुड रेफर टू द जेपीसी। एवरीडे एंड अगर इफ गवर्नमेंट इज नाउ एग्री एंड इफ पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर या आदर नित्यानंद जी अगर वो जेपीसी को भेज रहे हैं तो और थ्रेड बेयर डिस्कशन हो जाएगा। थ्रेड बेयर डिस्कशन होगा, गवर्नमेंट सीधे इस बिल को पास नहीं करा रही। नहीं, अभी ये आज तो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि इस पर और डिटेल डिलीबरेशन और डिस्कशन हो जाए, इसलिए हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं। तो जब आपने हमने कह दिया तो फिर इससे साफ है कि कम से कम नहीं क्या है।
6: वो प्रार्थना करिए,
3: एक मिनट अखिलेश को पूछिए। अखिलेश जी आप क्या कहने
7: सभापति जी? सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिला बोलने के लिए।
3: मैंने दिया तो समय आपको,
7: मुझे तो लग रहा था

0: तीन बजे तो बहस शुरू हो जाएगी।
1: नहीं, मैंने समय दिया,
0: तीन बजे तो बाद दो बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है।
1: धन्यवाद दीजिए ना कि
0: सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्षी लोग हैं। और सभापति महोदय,
1: इसीलिए
0: सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, माननीय मंत्री जी बताएं आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप?
1: अब सुन लीजिए, अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया टी आर बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो अब फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए।
2: मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ, इस FCRA बिल का जो प्रावधान आया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में, किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोविजन इन द प्रपोज FCRA टारगेटिंग एनी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। देयर इज अ कैंपेन टू मिसलीड सर्टेन कम्युनिटीज। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉट अ सिंगल provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India.
1: And if any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आप कृपया, अगर आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाएं। मैंने सभी को उस बिल पे जिस समय कर रहे थे, मैंने सबको मौका दिया, KC वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, TR बालू साहब को दिया, किरण रिजिजू जी को दिया। तो कृपया अब सदन चलने दें, सदन को सुचारू रूप से आप चलने दें। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सदन चले। अब देखिए, अगर मैंने मौका नहीं दिया होता तो मैं कहता, तो इसलिए मैं जो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं, मैं चाहता हूं कि सदन चले, तो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक।
3: And there you see the House has been adjourned till 3 p.m. But this amid the FCRA bill that has been sent to the JPC where the voting happened via voice note. Kiran Rijiju making that statement saying that cannot allow foreign funds to come into the country without a law on it. And there is a conceited effort by the opposition to mislead on FCRA. This amid the opposition also raising their voices asking for the withdrawal of this bill. The Lok Sabha has passed the FCRA bill where the voting had happened via voice note. The FCRA bill that has been sent to the Joint Parliamentary Committee that will now scrutinize this bill. And remember, the report that will be submitted by the JPC in the first week of the winter session, that is likely by November. So the JPC now will scrutinize every aspect of this bill. As some in the opposition who were demanding a withdrawal, some who had said that it must be sent to the JPC. Let's cut back to the live proceedings.
4: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उप संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।
2: कैसी वेणुगोपाल जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं और ये कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपी सिंह
1: गोपाल जी ना इफ आई मेल कैसी वेणुगोपाल जी तो आप
5: This legislation is clearly for targeted.

0: Thank you for staying with India Today. I'm Suresha Samant. Our all our focus on the letter that has been written by Amit Shah to Lok Sabha Speaker Om Birla, as the House is all set to resume at 3 p.m. this afternoon. In this letter, the intent of the government is very clear that they are open to debate. They are open to answer every question of the opposition. This letter that has been written by Union Home Minister Amit Shah to Om Birla, where the letter reads, and I quote, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has conveyed the government's consent at the Business Advisory Committee meeting for a discussion in Parliament on the student movement related to the NEET examination. He said, and I quote, I would also like to mention that even before the opposition's request, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was discussed during the ongoing session. However, none of the opposition MPs expressed any views in the House regarding the NEET examination during that discussion. Despite this, the government is once again ready for a discussion on the issue. I request you to consult the opposition and with mutual agreement allocate as much time as you consider appropriate from today onwards for the discussion. I wish to remain present in the House during the allotted time, participate in the discussion and answer all the questions. Let's now play out that exact statement that he had made this morning, where he had dared the opposition for a debate, and hours after that, this letter that he's written to Lok Sabha Speaker Om Birla.
1: वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही. भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है. संसद वो चलने दे बस. आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को. 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का. संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं. अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है. शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है. संसद में एट लेंथ चर्चा होती है. आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो. कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं. मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है.
0: Himanshu Mishra now joining us on the broadcast. Himanshu, this letter has been sent to Speaker Om Birla. What's the position of the opposition at the moment, where they clearly know that the letter has been submitted and the government is open for a debate?
2: ये बिल्कुल, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि वो सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, और अब पत्र लिखकर ये कह दिया है कि लोकसभा स्पीकर को उन्होंने पत्र लिखा. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर जो छात्र जो है वो धरने पे बैठे थे, उसको लेकर सरकार जो है चर्चा के लिए तैयार है. इस बात को किरण रिजिजू, जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने ये चीज बीएससी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कहा था, और मैंने भी आपसे अपील करता हूँ कि जो चीजें प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर बिल के अंदर नहीं रखी गई है विपक्ष के द्वारा, अगर वो चाहे तो हम सरकार चर्चा के लिए तैयार है और आप चर्चा कराइए. मैं चर्चा में पूरे समय भाग लूंगा और चर्चा के अंत में सभी सवालों का जो है वो जवाब भी दूंगा.
0: उन्होंने साथ में इस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि किस तरह से जब एग्जाम रिफॉर्म्स बिल पर डिस्कशन हुआ था, तब ऑपोजिशन ने कोई भी नीटस्टर पर सवाल नहीं उठाया, या जो सवाल वो अब पूछ रहे हैं तब उस पर बात नहीं हुई, तो अब क्यों वो इतना पुश कर रहे हैं?
2: देखिए, उनका यही कहना है कि अगर जब इस पूरे नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर और पेपर लीक मामले में जो सजा के लिए जो लाया गया था, उस पर जो है सरकार की तरफ से ये क्लियर किया गया था, और उस पर जब चर्चा हुई तो किसी ने भी नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो है उस चर्चा में कोई भी चीज मेंशन नहीं की है. अगर उसके बावजूद भी विपक्ष इस चीज के लिए आड़ा रहा कि छात्र आंदोलन पर जो है वो चर्चा हो जाए, तो ऐसे में हम चर्चा के लिए तैयार है. सरकार की तरफ से बीएससी में भी कहा गया है, और उसके बाद हम चर्चा के लिए तैयार है, आप चर्चा शुरू कराइए, मैं पूरे समय चर्चा में भाग लूंगा। उनका ये कहना है कि अगर जब उस बिल पर चर्चा हो रही थी जिसमें पेपर लीक मामले में लोगों को सजा को बढ़ाने के लिए बिल लाया गया था, उस बिल पर जो है यदि इस तरीके से
3: सभापटल पर प्रस्तुत करें बिल, बिल माने नागी, बिल हमने आपके पास भेज दिया, इस सदन ने सर्वसम्मति से उस बिल को सभी माननीय दलों के सदस्यों के लिए, उनके नेताओं के लिए, कि उसमें और थ्रेड एंड वेयर डिस्कशन हो जाए, कायदे से उस बिल को जो एविडेंस बुलाना हो, कंप्रेहेंसिव हो, उनका हो जाए। तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, आपको भी धन्यवाद देना चाहिए। आखिर अगर एक बिल कोई पारित हो गया, आप रुक जाए। नहीं, देखिए ये तो आपकी भावनाएं रखी गई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में। औजला साहब, नहीं, व्हाट डू मीन इफ गवर्नमेंट हैज इटसेल्फ मूव या रेफर टू एनी बिल टू द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये आपके लिए स्कोर है, आपके लिए स्कोर है, और आप कह रहे हैं इसके लिए नहीं है। आइटम नंबर थर्टी खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के लिए, माननीय मंत्री जी,
4: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई रेज टू मूव दैट द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 टू फर्दर amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 be taken into consideration.
3: प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अब विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। आप सबसे मेरा अनुरोध है, एक मिनट सुन ले जपका जी सुन ले, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने इस पर संशोधन मूव किया है और आप लोगों ने अगर इस पर अमेंडमेंट मूव किया है, तो मैं आग्रह करूंगा, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, दोज हु हैव मूव अमेंडमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर बिल, काइंडली यू टेक योर सीट, आई विल अलाउ यू। जिन्होंने संशोधन मूव किया है उनके सभी सदस्य अगर अपने अपने स्थान पे चले जाएं, तो मैं अन्यथा फिर मैं सभी खंडों को सभा के लिए निर्णय के लिए एक साथ लूंगा। माननीय सदस्य इनके प्रेमचंद्रन जी, क्या कहना चाहते
5: सर, आई एम ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, आई एम ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर,
3: आर यू मूविंग
5: योर अमेंडमेंट,
3: नो,
5: टू पास दिस लेजिस्लेशन, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इट इज अगेंस्ट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
3: इफ यू आर मूविंग नथिंग विल बी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अरुण नेहरू जी, विशाल पाटिल जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, श्री अभय कुमार सिन्हा जी, श्री आज आर सच्चिदानंदम जी, श्री बेनी बहनन जी, श्री मनोज कुमार जी, दुरई वाइको जी, इतने माननीय सदस्यों के द्वारा आया है, और तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले लूँगा। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बना। अब खंड 1 अधिनियम और सूत्र और विधेयक का पूरा नाम, प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों।
0: Sloganeering and ruckus in the parliament yet again. For the moment, I toss this to my colleague Abha Bakaya of Business Today for all the latest on the markets. Over to you, Abha.
6: Look, this investment guru tips will double your money. Just claim the offer.
7: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight.
8: Well said, well said, well said.
7: SEBI and NSC advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSC.
9: Presented by National Stock Exchange.

0: नहीं, उन लोग हमेशा लाइट उठ का ही काम करते हैं।
1: अच्छा, तो आप क्या बोले, ले आओ यहाँ से?
0: वो बोले कि ले आइए अपना वाला, दूसरा जनरेटर जाएगा वहाँ पे।
1: अच्छा,
2: तो पहले वो उसको भेजेगा तब
0: नेक्स्ट
2: भेजेगा।
0: भैया टेंशन काहे ले रहे हैं, ऐसा कोई धोखा वाला बात
3: नहीं।
0: अरे कोई टेंशन नहीं,
3: टेंशन है,
4: चाल है सरकार के, सोचे समझी चाल है। देख लीजिए यहाँ, दिखाइए,
5: जनरेटर लगे
0: जो लगवाए थे।
5: कौन लगवाया था?
0: लगवाए थे, कहाँ किया?
1: कौन है बंटी, कौन है ये
5: बंटी, कौन
0: काम करता है लाइट वाला?
4: जब तक हम लोग का जनरेटर नहीं आएगा तब तक हम लोग जाने नहीं देंगे सर।
1: दरअसल ये एक बड़ा जनरेटर यहाँ पर लगा था और इससे जो है कनेक्शन जोड़ा गया हुआ था, छात्रों ने हालांकि ये रखा था, उसके बाद ये जनरेटर भी आया हुआ था। अब ये नहीं बता रहे हैं कौन, लेकिन अचानक से वो कह रहे हैं, जिसका जवाब है छात्र कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन ने दबाव बनवाया है। अब ये जनरेटर जो आंदोलन में छात्रों को बिजली उमस भरी गर्मी से राहत मिलती थी पंखे चला करके, अब ये जनरेटर ले जाने आए हैं। देखिए इसको पूरा कनेक्शन इन्होंने यहाँ से काट दिया। छात्रों के पास जो बचा है वो एक छोटा सा जनरेटर है यहाँ पर, ये इसी में जो है फ्यूल डाल के इसी के सहारे जो है अब ये काम चल रहा है, ताकि इसे मंच पे उन्होंने स्पीकर चला रखे हैं और जो बिजली की व्यवस्था है वो कर रखी है। लास्ट मिडनाइट द हाई वोल्टेज ड्रामा दैट अनफोल्डेड हियर इन दिस पंडाल, दिस द 19th डे एंड वाज यू नो ट्रांजिशन बिटवीन 18th एंड 9th एंड मिडनाइट व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन विद फुल फोर्स रीच्ड द स्टूडेंट्स वर क्वाइट वरीड कंसर्न्ड, दे स्टार्टेड रेजिंग अलार्म, दे वर कॉलिंग अस, दे वर सेंडिंग आउट मैसेजेस, आई रिसीव पर्सनली सो मेनी कॉल्स बाय द स्टूडेंट ग्रुप्स, द सर लुक्स लाइक कुछ बहुत बड़ा होने वाला, गड़बड़ होने वाला, हमें हटाया जा रहा है। दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग दोज ऑफिशियल्स वेयर इंटरोगेटिंग स्टूडेंट्स अबाउट देयर आइडेंटिटी एंड दे वर वेरी कैटेगराइज्ड दैट सिंस द JSPC demand has been met, those students cannot stay here, only the CGL can stay here, this is not a designated site. क्या छात्रों का आंदोलन कम पड़ रहा, कमजोर हो रहा है?
4: नहीं सर, ये कमजोर नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र में जब सुनामी आती है उससे पहले शांत रहती है, तो वही है कि अभी शांत है, हम लोग सुनामी की तरह है, एक बार आएंगे तो हम झोंक के ले चल जाएंगे।
1: तो बिजली भी काट दी गई, इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे
4: सर? हम देखिए अभी हम अभी मेरा जो ऑपरेटर है जो बिजली जोड़ने का काम जनरेटर से कर रहे हैं, जनरेटर हैं हम लोग, जनरेटर चालू करके हम लोग जनरेटर रहेंगे। बिजली नहीं आएगी तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग।
1: क्या छात्र लौटेंगे जो चले गए?
4: सब आएंगे सर, सब आएंगे, जिस तरह से आह्वान हम लोग किए थे, क्योंकि वही मांग है ना सर।
6: हम लोग आह्वान कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि जो भी छात्र हैं डरे न, फिर डट के खड़ा हो।
1: रात को डर के चले गए वो? The number of students have reduced quite significantly at the agitation site, and now that's also raising that how long they will survive this agitation. But at the same time, there are few who are adamant, who are still strong on their demands that until CGL is withdrawn, they will not go back. And despite of all this adverse weather, the hostile weather, peak of humid and peak of heat, and then the heavy rains, and there is not even electricity.
7: विपक्ष के साथियों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। इनको बहुत आशाएं हैं हमसे भी, राज्य की जनता को तो आशा है और उनके अनुरूप हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो आशाएं हैं और इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो इतनी अधिक है कि इसको पूरा करते करते कितना जन्म लेना पड़ेगा इसका तो अंदाजा मैं नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से राज्य की जनता को आश्वस्त करने में हम लोग सक्षम है। इनके सहारे की आवश्यकता नहीं।
8: कैसे सेपरेट इशू है? मतलब दिल्ली का छात्र अलग है और झारखंड का, हम यदि पिछड़े क्षेत्र के हैं, यदि वो अमीर क्षेत्र के हैं, अमीर पार्टी के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो उनको झारखंड का पिछड़ापन नहीं दिखाई देता है, गरीबी नहीं दिखाई देता है, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है, उनको तो डूब मरना चाहिए। डूब मरने वाली स्थिति है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की, कि जिस तरह से झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, वहां के डीजीपी, वहां के चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरंकुश तो मैंने तानाशाह कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है, वो वहां के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ाया, सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं?
9: इंडिया टुडे इज ऑन द ग्राउंड टू गेट यू दिस फर्स्ट हैंड रिपोर्ट। आशुतोष मिश्रा विद दिस ग्राउंड चेक।
10: हर बार एग्जाम निकलता है इस तरीके से होता है कि एक दो नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जैसा मेहनत करने वाला को कैसे होगा, आप सोच के देखिए।
1: यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चला?
10: हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहीं दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के, कि हमको 6 से 8 घंटे टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके, मेहनत कर सके। अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है, लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है। हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए, अभी मेरा बात से बहुत सारा मेरा आदिवासी भाई बहन को बुरा लगेगा, लेकिन देखिए सब नाचने गाने में सबको आगे रहता है, लेकिन सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता है। कल देखिए आदिवासी दिवस मनाया गया 9 अगस्त को।
1: बेटा आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं दिया।
10: ये मेरे ही पे तैयारी करते हैं, हम इसको समझाएं, अभी तैयारी करने के लिए तो मजबूर किए।
1: आपकी बहन है छोटी?
10: छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है, हम जहाँ तैयारी करते ही आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे इसको इसीलिए।
9: We'll continue to tell you what's unfolding for the student protest and why can't the Suren government really resolve it for once and for all. After a very short break, stay tuned with me because I'm going to tell you about the latest video that has emerged as evidence, as is being seen, of the death of gangster-turned-politician Atiq Ahmed's son, who died in a car crash recently. What happened? We have the details about him and more after the break.
2: Are watching India Today.
11: EU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
12: Money, money, money, money, every month.
13: Soch badlo aur bank bhi.
14: Election after election after election, there is a tough battle for every vote. And that is what matters. Whether it's the BJP or the Congress or the Aam Aadmi Party or any other party across our country, they have to sell a narrative. They have to convince people. And whoever gets convinced, whichever party, that party wins. Democracy wins.

0: मतलब सड़क में बनी हुई है।
1: हाँ, हमें जाने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत आती है और सरपंच को मंत्री को
2: She said that the total expense for the travel and participation came to around 3,70,000 rupees with a

0: Sorry, Himanshu, take us through what exactly happened here.
1: देखिए आज जो जस्टिस वर्मा को लेकर जो कमेटी की रिपोर्ट है वो लोकसभा में टेबल की गई है और उसमें ये रिकमेंडेशन की गई है कि उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए क्योंकि उसमें जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उसको सही पाया गया है। अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो है वो महाभियोग जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाएगा, वो संसद के अंदर तय करना है वो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में। अगर लोकसभा में आएगा तो उस वो नेक्स्ट सेशन यानी जो नेक्स्ट विंटर सेशन है उसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा क्योंकि अप्रैल में जो है जस्टिस वर्मा ने रिजाइन कर दिया था। टेक्निकली अगर देखा जाए तो अभी तक उनका जो रिजाइन है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की के द्वारा, तो ऐसे में वो अभी भी जज के पद पर बने हुए हैं और यही कारण है कि सरकार का ये मानना है कि जब उनको ये कहा गया था कि आप रिजाइन कीजिए तब उन्होंने नहीं रिजाइन किया, तो अब ये जनता के सामने सच आना चाहिए कि जो पैसा जला हुआ उनके घर पे मिला वो किसका था, कहां से आया था। तो ये सारी चीजें जो है उसमें जो है उनको दोषी भी पाया गया है इस रिपोर्ट पे और अब उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा तो उनको एक मौका और दिया जाएगा कि वो संसद के सामने आए और अपने पक्ष को रखे। उसमें एक बड़ी टेक्निकल चीज को आपको देखना होगा, यशवंत वर्मा खुद भी अपीयर हो सकते हैं, उनके लॉयर भी जो है वो अपीयर हो सकते हैं जब हाउस में उनके खिलाफ जो है महाभियोग इम्पीचमेंट जो है वो लाया जाएगा।
0: जी Himanshu Mishra there saying that there is a possibility of that happening over there, his impeachment to actually take place, and before that he could be given a chance to actually appear before the parliament, he or his lawyer. So let's see where the story is going for now. But let's move back. It's International Youth Day, like we said, and let's not forget the youth who have been protesting for 19 days in Jharkhand. Day 19 for the Jharkhand student protest, and the agitation is showing no signs of slowing down as students remain on the streets demanding action, and a paper fraud probe is now throwing up explosive revelations. Now, before I move back to what the protests are really all about, India Today has learned that the accused, Abhay Tiwari, remember the mastermind, how we actually got to know how the entire scam had happened there, told the CID that marks of 7 students were allegedly increased for money and that he collected 5.8 crore from students, from 20 students. The probe has also widened to the former JPSC chairman. While the BJP and the JMM trade charges over the investigation, the protest side at the moment is where the pressure is really mounting. Over the last 24 hours, the power supply to that stadium has been cut. One of the 2 generators which were providing that extra power, things like fan, electricity at night, that has also been taken away.
2: The protesting Jharkhand students staying defiant on day 19 of the protest. Amid this, the intensifying probe is bringing big revelations to light. India Today has learned that accused Abhay Tiwari, the mastermind of the paper fraud, told Jharkhand CID that marks of 7 students were increased for money and that he collected rupees 5.8 crore from 20 students. The accused further said that 25 lakh rupees were taken for the FRO post and 35 lakh rupees for the ACF post. Abhay also revealed to the CID that the fraud extends to previous JPSC exams as well. Another accused caught in the eye of the storm is former JPSC chairman L. Khyangte, who was arrested by the Jharkhand CID in connection with the paper leak. The BJP called his arrest by CID a bid to save him from ED as he knows too much.
3: धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है वो वहां के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ाया। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र जो पकड़ाया है वो वहां के शीर्षस्थ अधिकारी के घर से पकड़ाया है, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनको पता है कि यदि जांच बढ़ेगी तो ये जांच हेमंत सोरेन से लेके वहां के मुख्य सचिव तक जाएगी।
2: The JMM on the other hand defended the probe by the state agency.
4: हमारे यहाँ कार्रवाई में अगर कमी हो रही है तब फिर हम बोलेंगे कि भाई हमें किसी और की आवश्यकता है। लोग अरेस्ट हुए हैं, कार्रवाई लगातार हो रही है, जो संशोधन की जरूरत है उसको सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं और सरकार ने संवाद का दरवाजा खुला हुआ है।
2: Meanwhile, at the protest site, the power supply has been cut, and the protesters claim that the main generator has also been removed, allegedly on government's order, leaving them in dark and sweating in the already humid weather.
5: एक बड़ा जनरेटर यहाँ पर लगा था और इससे जो है कनेक्शन जोड़ा गया हुआ था, छात्रों ने हालांकि ये रखा था, उसके बाद ये जनरेटर भी आया हुआ था। अब ये नहीं बता रहे हैं कौन, लेकिन अचानक से वो कह रहे हैं, जिसका जवाब है छात्र कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन ने दबाव बनवाया है। अब ये जनरेटर जो आंदोलन में छात्रों को बिजली उमस भरी गर्मी से राहत मिलती थी पंखे चला करके, अब ये जनरेटर ले जाने आए हैं। ये देखिए, इसको पूरा कनेक्शन इन्होंने यहाँ से काट दिया। छात्रों के पास जो बचा है वो एक छोटा सा जनरेटर है यहाँ पर, ये इसी में जो है फ्यूल डाल के इसी के सहारे जो है अब ये काम चल रहा है, ताकि इसे मंच पे उन्होंने स्पीकर चला रखे हैं और जो बिजली की व्यवस्था है वो कर रखी है।
2: But the protesters remain defiant. Their icon, Devendranath Mahato, has entered the 11th day of the hunger strike on Wednesday. He penned a letter from Ranchi's Sadar Hospital saying that while his body may be weak, his resolve to fight for justice will never weaken. He has warned the government that the protest will intensify if the students' demands are not met. Other protesters too stand firm.
5: बीजेपी का प्रदर्शन हो गया, कोई रास्ता दिख रहा है? यहाँ से आगे रास्ता क्या है?
6: रास्ता भी लड़ाई लंबी है, बार बार लड़ाई लंबी है अभी, और लड़ना है, हम लोग लड़ते रहना है।
5: कोई तो दिशा होगी, कुछ तो तय किया होगा।
6: दिशा अभी हम लोग है, सब छात्र लोग आ रहे हैं, जन आंदोलन का होगा, जन आंदोलन।
2: After the August 10 police action, will there be more talks to end the agitation? Or Jharkhand is set for more agitation by students fighting exam fraud? With Ashutosh Mishra in Ranchi, Bureau Report, India Today.
0: Shashi Bhushan joins us for more details on this story. Shashi, take us through what exactly is the condition of electricity at the moment. Kya vaha par bijli wapas aa gayi hai ya generator wapas kar diya gaya hai? Aur is samay jo bacche fast par hain, jo protest site par baithe hue hain aur ICU mein bhi jo unke leader baithe hue hain, dono ki kya halat hai?
7: देखिए, बिजली तो बहाल नहीं की गई है। जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जहां धरना स्थल है वहां पे बिजली काटी जा चुकी है रात से ही। एक बड़ा जनरेटर जो है वो था वहां पे, जो एक ऑप्शन था, विकल्प था, जो प्रदर्शनकारी आंदोलनरत छात्र हैं उनके लिए इस उमस भरी गर्मी में। जो आशुतोष वहां से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे उसमें उसको भी हटा दिया गया है। जो छोटे साइज का जनरेटर होता है, पुराना जनरेटर ट्रेडिशनल, वहाँ पर वही एक जनरेटर है जिसके सहारे हो सकता है थोड़ी बहुत जो पावर है वो मिल पाए उस आंदोलन वाले कैंप में। लेकिन हाँ, जो इरादा है उसमें थोड़ा सा भी कह सकते हैं कि वो कमज़ोर नहीं हुआ है, वो मनोबल कमज़ोर नहीं हुआ है छात्रों का जो आंदोलन कर रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट साइट पे। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी मांग मनवाने के बाद ही यहाँ से हटेंगे। वही हाल देवेंद्रनाथ महतो और उनके साथ जो दूसरे नेतृत्वकर्ता हैं जो आईसीयू में एडमिट हैं या दूसरे अस्पतालों में, वहाँ भी उन्होंने अनशन को जारी रखा हुआ है। आज मैंने खुद बात की थी जो देवेंद्रनाथ महतो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, चूंकि वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो उसी पार्टी के संस्थापक और विधायक हैं जयराम महतो। जयराम महतो ने कहा कि छात्रों का आंदोलन कम नहीं होगा, भले ही हमारी पार्टी से जुड़े लोगों ने इसका नेतृत्व शुरू किया था, लेकिन अब ये छात्रों का आंदोलन है तो जाहिर तौर पर जब तक लड़ाई अंतिम अंजाम तक नहीं पहुँचती है तब तक इसका संघर्ष हम जारी रखेंगे। भले ही आज ये लग रहा हो कि थोड़ी कह सकते हैं कि थोड़ा ताकत कम दिख रहा हो या ऐसा लग रहा हो कि संख्या बल की कमी है, लेकिन हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे रिफॉर्म्स होने तक। जी,
0: ऑल राइट, इंटरेस्टिंग डिटेल्स ओवर देयर। द गवर्नमेंट हैज कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, टेकन द जनरेटर अवे, बट द प्रोटेस्ट इन रांची आर नॉट डाइंग आउट। Talking about Uttar Pradesh next, the brand new airport built at the cost of thousands of crores and barely 2 months into the commercial operations, waterlogging has now been seen inside the premises of Noida's new Jewar Airport. This is raising serious questions. The airport management says the water was cleared within 30 minutes, but the bigger question is about the infrastructure itself. Take a look.

Who season is here, and this time it's got a new name attached to it. You'll probably remember H1N1. Yes, it's back in Delhi. For this video, we've spoken with Dr. Suranjit Chatterjee, internal medicine specialist at Apollo Hospitals. The numbers tell the story here because according to reports, Delhi has already logged around 1,300 swine flu H1N1 cases this monsoon. That is nearly 6 times last year's count for the same period. The real numbers are likely to be much higher. So if your kid comes back home with a fever, how do you know? Which one is it actually? देखिए, regular flu और H1N1 दिखते identical हैं पर है नहीं। कहने को उसमें भी fever होगा, cough होगा, body ache होगा, sore throat होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा detail में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो H1N1 का fever होता है, वो suddenly spike करता है और बहुत देर तक ऊपर रहता है। It is stubbornly high. Also in certain cases breathlessness हो जाती है, deep fatigue होता है, आपको disproportionately ठंड लगेगी और muscle और joints में भी बहुत pain होगा। तो एक adult तो शायद ये differentiation बता सके, पर बच्चों को ये सारे symptoms बताना बहुत मुश्किल होता है। So your first thing to do if you have a flu this time of the year is please get tested. The only way to confirm is to actually get it tested, especially if somebody around you has already got H1N1. अब treatment की बात करते हैं। अगर आप H1N1 positive निकले हैं, तो generally ये cases आजकल mild हो गए हैं और 3 से 5 दिन में clear हो जाते हैं, just like flu. And क्योंकि एक ये viral infection है, आप ज़्यादातर इसका symptomatic treatment देते हैं। आपका fever manage करा जाएगा, आपका body pain manage करा जाएगा, आपको बहुत सारा rest करने को बोला जाएगा and fluids लेने को भी कहेंगे। लेकिन ये problematic किन cases में हो जाता है? अगर आप elderly हैं, अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर if you are a pregnant woman, anyone with diabetes, heart disease or a lung condition, ऐसी conditions में डॉक्टर आपको एक antiviral पे शुरू कर देंगे, oseltamivir या फिर Tamiflu के नाम से ये बहुत famous है। अब मैंने आपको नाम बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप self prescribe कर देंगे, let your doctor take that call। एक और सवाल आता है कि अगर आपने influenza shot या flu shot लिया हुआ है, क्या वो आपको help कर सकता है? देखिए, seasonal flu के जो shots आते हैं, उसमें H1N1 का protection होता है, but इसका कोई guarantee नहीं है कि अगर आपने shot ले लिया, आपको infection नहीं होगा। इन्फेक्शन का जो डिग्री ऑफ इम्पैक्ट है वो कम होगा इस शॉट से। न्यूबॉर्न्स और टॉडलर्स के वैक्सीनेशन स्केड्यूल में ये ऑलरेडी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या नहीं करना है, सबसे पहले अगर आपके बच्चे को फीवर है तो उसे स्कूल ना भेजें, पूरे क्लास को इम्पैक्ट करने से बचाएं। दूसरा, सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करना है। एंटीबायोटिक्स आर अ नो, H1N1 इज अ वायरस, एंटीबायोटिक्स डू नथिंग टू इट, दे ओनली कॉज मोर प्रॉब्लम। एंड लास्टली, डू नॉट स्किप अ गुड हैंड वॉश रूटीन। मास्क पहनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, स्नीज सही तरीके से कर रहे हैं या कॉफ सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी काफी अच्छे से बचा सकते हैं।

0: This flyover in Bhopal's MP Nagar was inaugurated in January 2025 by Chief Minister Mohan Yadav. Built at a cost of 121 crore rupees to ease traffic congestion in one of the city's busiest areas, the flyover today is riddled with potholes.
1: पूरी की पूरी सड़क पे दूर तक आपको दिख जाएंगे कि गड्ढे जो हैं बड़े गड्ढों से लेके छोटे गड्ढों तक यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और जो गुजरने वाले यहाँ से दोपहिया वाहन है उनके लिए ये ज्यादा बड़ा खतरा है। जो चौपहिया वाहन है वो तो यहाँ से निकल जा रहे हैं तेजी से फर्राटा भर के, लेकिन दोपहिया वाहन जो है वो अगर इसमें पड़ते हैं तो फिर उनके सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये फ्लाईओवर के जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं वहीं पर ये गड्ढा बना हुआ है।
0: The potholes are not limited just to the flyover. The condition of the roads under the bridge are no different.
2: काफी टाइम हो गया सर, गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
3: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की। कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं देता, पलटने, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे।
0: The real question is, how does a road disintegrate so easily? In less than 2 years. Why is there no proper maintenance? And who is sleeping at the wheel? With Ravish Pal Singh in Bhopal, Bureau Report, India Today.

0: भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहां अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं और किसी की वेशभूषा को लेके सवाल उठाना, उसको अपमानित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक रिवाज बन गया है। आप उसको लेके अपमानजनक शब्द सदन के अंदर बोलेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
1: ये एक छोटी बात नहीं है, ये सिर्फ ब्रिटिश का ऊपर हो गया हमला नहीं है, ये सभी का ऊपर है, पूरा देशवासियों का। हमारा मन में ऐसा फर्क नहीं है साउथ नॉर्थ, हम देशवासी है, प्राइड इंडियन है, लेकिन ये लोग अटैर के नाम पर और मतलब कलर के नाम पर और रंग के नाम पर और खाना के नाम पर डिविजन होना चाहिए, इसलिए हमने ये समस्या उठाया, बुट्टासी ने ये समस्या उठाया सदन के अंदर। पूरा देश, ऐसा नहीं है सिर्फ केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पूरा देशवासी, काश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी एक साथ है। देखो इस प्रोटेस्ट में भी हर लोग था, सभी लोग था, हर राज्यों से लोग था, ये देश का यूनिटी के लिए एक प्रोटेस्ट है। ये हम देखो क्या चेयरमैन का फैसला है, उसके बाद हम ये प्रोटेस्ट को आगे करेंगे।

0: देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे और कल दोपहर 3 बजे तक, हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो।
1: Suzlon, long good energies that work. Kia Seros EV. Designs crafted for natural diamonds to sparkle the brightest.

0: कई समस्याएं होती है, उन समस्याओं की चर्चा होनी चाहिए। और रहा जो ये सीजेपी का आंदोलन चल रहा है, अगर ये हाउस चलने देते कांग्रेस पार्टी, तो हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले ही आ जाता चर्चा के दौरान। उन्होंने चर्चा नहीं चलने दी और उसका श्रेय वो सीजेपी वाले लिखे गए, उनको दिया उन्होंने श्रेय। ये कांग्रेस अपना भला बुरा नहीं समझ पा रही, मुझे इस बात का दुख है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे बहुत शर्म आती है, दुख होता है कि हमारी जब पार्लियामेंट नहीं चलती है तो हमारे जब भी हम आते हैं एयरपोर्ट पे जाते हैं, लोग हमारे को बड़ी आशा से देखते हैं, आदर से देखते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी वाले हमारे को प्रायोरिटी में देते हैं। और जब इतनी विश्वास से जनता हमारे को सब जगह देखती है, पार्लियामेंट मेंबर का इतना सम्मान सब जगह होता है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये इस तरह का लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक है, दुखदायी है। और मैं समझता हूं कि इनको कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी चाहिए, और सरकार को घेरने के लिए पार्लियामेंट से बढ़िया कोई जगह हो नहीं सकती। उनमें आपके बड़े अच्छे अच्छे वक्ता हैं, वो प्रश्न पूछेंगे और सरकार जवाब देने को बाध्य होगी, जवाब देगी।
1: चलिए, बहुत शुक्रिया सिरोज जी कि आप हमसे जुड़े। थैंक यू मिस चौधरी, वांटेड टू कम बैक, बट दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव फॉर इन दिस शो राइट नाउ। सो you know, I'm sure in days to come, we are going to get our panelists back. But I want to just quickly shift focus on a story that we've been tracking very, very keenly. After the Jantar Mantar protest, the spotlight was on Jharkhand. The Jharkhand protest may have erupted over JPSC and JSSC irregularities, but on the ground, the anger runs much deeper. For thousands of young Jharkhandis, this is about jobs. It's about vacancies, and it is about years of wait. India Today has been on the ground in Ranchi speaking to the protesters at the heart of this agitation. A story of a generation waiting for jobs that may never arrive. And the number of vacancies that the Jharkhand government has announced and did not honour. This is our special report.
2: The Jharkhand protest is not just about exams. On the streets of Ranchi, it's a protest over jobs, vacancies and years of waiting. For thousands of young Jharkhandis, government recruitment has become a cycle of preparing, appearing, waiting and starting all over again. India Today has been on the ground speaking to protesters at the heart of this agitation. And behind the anger over JPSC-JSSC irregularities lies a much bigger crisis. The crisis of jobs. 26,001 assistant teacher vacancies were announced. Exams were held for it in 2024. 2 years later, appointments still remain incomplete. 9,000 TGT vacancies were announced in 2016, and these posts were abolished in 2025. For an aspirant, every vacancy is a chance. But protesters say in Jharkhand, even that chance has become uncertain. We
3: are preparing for 20 years.
4: कितने साल से करी है आप?
3: 20 साल से कर रहे हैं, मेरा 39 साल हो गया है। मैंने हाई स्कूल का भी परीक्षा क्वालिफाई किया, सिलेक्टेड कैंडिडेट से 20 नंबर अधिक नंबर लाया, इसके बावजूद भी मेरा नियुक्ति नहीं होता है। सहायक एचआर का परीक्षा लिखा, उसमें भी क्वालिफाई हूँ, आपके कैमरे में मैं दिखा सकता हूँ, इसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं होता है, जबकि 14,000 सीट खाली रहता है। 26,000 एक पद पर बहाली निकलता है, तो उसको विज्ञापन एक बार हुआ, परीक्षा एक बार हुआ, तो रिजल्ट एक बार होना चाहिए, नियुक्ति एक बार होना चाहिए, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ सभी नियुक्तियाँ बंटते हैं। 5 बार नियुक्ति पत्र सहायक आचार्य का बंट गया, लेकिन अभी तक 26,000 एक पद पूरा नहीं हुआ। ये भी पूरी तरह से सौदा करते हैं, तो क्रांति करना तो मेरा मजबूरी हो गया। मेरा सारा जवानी को इन्होंने खत्म कर दिया, मैंने पूरे जवानी को पढ़ने में लगाया, और मैंने सोचा था कि पढ़ लिख करके देश का एक सेवा करूंगा, चाहे जिस रूप जिस क्षेत्र में मेरे को सेवा का मौका मिलेगा। लेकिन इन्होंने,
4: आप क्या करते हैं?
3: बस मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं और अपना पढ़ाई करता था, अपना मेंटेन भर करता था, लेकिन मेरा सपना चूर चूर हो गया है।
2: एंड द प्रॉब्लम इज नॉट लिमिटेड टू द एजुकेशन सेक्टर। 5,000 police vacancies have been announced, but exams have never been held. Thousands of young men and women prepare for these posts, often for years. And for those waiting against an age limit, every year matters.
5: दरोगा बनने का, तो मैम ये वैकेंसी आया ही नहीं, और मेरे पिताजी तो चले गए, बट ये सपना सपना

0: ना ही रह गया अभी हमारा, मतलब कि ऐसा है कि करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे।
1: अभी कितना एज हो गया
0: मैम? मेरा अभी 28 हो गया मैम। तो अभी चीजें ऐसी हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नहीं है, ब्लैंक हो गया सब कुछ। और अभी क्या ही मैं बताऊं, जेपीएससी जेएसएससी सब में धांधली है कम्प्लीटली। छोटा से छोटा पोस्ट भी यहाँ पे पता चलता है कि सोल्ड आउट हो जाता है, तो कैसे बिलीव करेगा मैम? हम लोग यहाँ के मूल निवासी है, अब हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं होता है। कितना भी स्किल्ड हो, हम लोगों को एक मतलब कम अमाउंट में मिलता है तो हम लोग उतना में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारे परिवार हैं, हम लोगों को उम्मीद है, अब इस स्टेट में रह रहे हैं मैम और इसी स्टेट का कोई एग्जाम नहीं आ पा रहा है। अब बताइए,
1: 10 साल से कोई वैकेंसी नहीं आया है दरोगा
0: मैम?
1: 19 में आप दरोगा का एग्जाम तब आप नहीं दे पा रहे थे, एज नहीं था,
0: और
1: 10 साल वेट किया, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं
0: आई नहीं है मैम। मतलब आप समझिए ना कि अभी जो है 30 साल तक का उसका रहता है, 21 से 30, क्योंकि जनरल का कैटेगरी वही रहता है। ओबीसी में 2-3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो ओबीसी में क्रीमी लेयर बनाओ, ये करो वो करो, बहुत सारे उसमें होते हैं। तो मैम अब 2 साल के बाद मैं एलिजिबल भी नहीं रहूंगा, बताइए। मतलब एक मतलब पूरा का पूरा एक आदमी का एज निकल गया लेकिन वैकेंसी तक नहीं आ रही है, और उसमें भी सरकार जो आश्वासन देती है कि अब आएगा अब आएगा, और बम्पर भर्तियां आ रही है। कहाँ है मैम, कहाँ है? कुछ दिखता नहीं है। हम लोग मतलब परेशान हताश इस प्रकार से है ना, प्रताड़ित इस कदर से हो गए कि रात रात में हम लोग को तिरपाल भी ऐसे लेकर के खड़ा होना पड़ रहा है ना, तो हम लोग रह रहे हैं, पूरा भीगा हुआ हूँ मैम अभी। बट क्या करूँ, हम लोगों के पास कोई होप नहीं, होप यही है कि लड़ना है।
2: The vacancies that candidates wait for are often the difference between staying in the race and being pushed out of it. Take the Forest Ranger Officer recruitment. Exam was held for 170 posts, but candidates allege that few candidates were made to memorize question papers in hotels.
1: कहाँ से आए हैं आप?
3: हम तो पलामू से हैं। पलामू?
1: इतना दूर यहाँ आए हैं?
3: हाँ।
1: इसी चीज के लिए?
3: स्टूडेंट है मैम।
1: आप स्टूडेंट हैं और इसी चीज के लिए?
3: हाँ, इसी चीज के लिए आए हुए।
1: और डटे रहेंगे?
3: हाँ।
1: इसीलिए सीआईडी पे भरोसा नहीं है?
3: सीबीआई चाहिए हम लोग।
1: जो यहाँ पर बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि 19 से सारे एग्जाम रद्द करिए, पर 19 से सारा एग्जाम रद्द करना कैसे होगा, लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया।
3: मैम हम लोग फारों का भी दिए हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, उसका भी पेपर लीक हुआ है, उसमें भी मतलब धांधली है,
4: लिखवाया जा रहा है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो मेन्स की कॉपियां हैं एक प्राइवेट एजेंसी के प्राइवेट रूम में होटल में पाई गई, उनके कंप्यूटर में पाई गई, तो ऐसा कहां रूल है? मेन्स की कॉपियां जब भी स्टूडेंट मेन्स लिखते हैं उसके मेन्स लिखने के बाद कॉपियां जो है वो स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है, आयोग की जेपीएससी के स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है। बट एफआरओ मेन्स की आंसर राइटिंग की कॉपियां जो है जो मेन्स के एग्जाम में लिखी गई थी एक प्राइवेट एजेंसी के निजी कंप्यूटर लैपटॉप पे भी कॉपियां पाई गई, तो कैसे हुआ है? ये सिस्टम में ऐसा लूप होल है कि ऐसा सुनने में आता है, लोग एक बच्चा बोलेगा कि यहाँ की मेन्स जो है स्टूडेंट तो हॉल में लिखते हैं ना, और जो सेटर लोग हैं वो होटल में बैठकर मेन्स की कॉपियां लिखते हैं और सिलेक्ट होते हैं मैम।
2: एंड देयर आर मोर एग्जांपल्स। 843 LDC vacancies were announced. Applications invited 4 times. The vacancy was later withdrawn. 408 stenographer vacancies were announced and the applications accepted for 2 years, only for the vacancy to be later withdrawn.
1: There's a fair amount of anger. कहाँ से आए हैं सर आप?
5: हम ये बोकारो चास।
1: बोकारो से आए हैं यहाँ पर? क्यों पहुँचे हैं यहाँ?
5: मैम एक्चुअली मैटर तो मेरा जेपीएससी का भी है जेएसएससी का भी है, लेकिन हमारा जो पर्सनल अभी मैटर है वो आंसू लिपि स्टेनोग्राफर को रिलेटेड है। स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी 2022 में आया था वो अभी 2026 हो गया, अभी तक वो कम्प्लीट नहीं हो पाया है, और अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ और एग्जाम को रद्द कर दिया गया है वापस। एलडीसी का एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया मैम, जिसमें सेटिंग नहीं हो पाती है ना।
1: सर्विस कमीशन?
5: यस मैम,
1: जेएसएससी की बात कर रहे हैं, झारखंड स्टाफ कमीशन।
6: ये जो आंसू लिपिक है जिसको स्टेनोग्राफर कहते हैं, ये 2022 में आता है, 23 में परीक्षा ली जाती है, फिर इसको रद्द कर दिया जाता है, फिर 25 में आता है, फिर 26 में इसको रद्द कर दिया जाता है। जब आयोग से हम लोग पूछते हैं कि आखिर रद्द क्यों हो रहा है, तो आयोग कहता है कि आप किसी और चीज का तैयारी कर लीजिए। ये मैं बताना चाहूंगा, एक स्टेनोग्राफर तब बनता है जब 5-6 साल तैयारी करता है, जब वो शॉर्ट हैंड लिखता है। शॉर्ट हैंड एक स्किल है, शॉर्ट हैंड लिखने के बाद भी एक हिंदी टाइपिंग ये है वो भी स्किल है। तो हम आयोग,
1: आप जेएसएससी का एग्जाम दिए?
6: जी जी जी। तो हम आयोग को बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह का बहाली लाते हैं, फिर रद्द करते हैं, फिर लाते हैं, फिर रद्द करते हैं, तो स्टूडेंट से आप एग्जामिनेशन फी वसूलने के लिए आ रहे हैं, और विज्ञापन अगर निकाल रहे तो आप नशा में निकाल रहे हैं।
2: And even when an examination is finally held, the ordeal may not end there. For instance, let's look at the JSSC Junior Engineer Recruitment Exam, an exam that has been held only thrice in the last 17 years, and with the last one being cancelled due to a paper leak.
7: विक्रम कुमार है, मैं देवघर से आया हूँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ.
1: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतना दूर क्यों आए हैं सर?
7: मैम, बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने को. पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ है, सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में. 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई है. तो हमने RTI के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है, हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली होता है. इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी टेबल्स होते हैं वहाँ पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है. ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो DOPT में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ से वैकेंसी जारी होती है. यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, और इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है. और जो प्रॉपर लेटर के माध्यम से हम सब, देखिए ये कार्मिक विभाग प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, यहाँ पे जाके भी वैकेंसी के लिए हमने अर्जी दी हुई थी. ये विभाग के अंदर टोटल सीट है. उसके बाद यहाँ पे पथ निर्माण विभाग में भी अर्जी दी हुई थी. ये भी देख लीजिए, सारा कोई ऑफिशियल लेटर, हमने पत्राचार का जितना भी माध्यम था सारा अपना लिया है. उसके बाद हम फिजिकल प्रोटेस्ट में आए हुए हैं यहाँ पे कार्मिक.
1: ये पूरा काम करने के बाद, ये सारा चिट्ठी विट्ठी लिखने के बाद फिर प्रोटेस्ट से जुड़े हैं?
7: फिर प्रोटेस्ट से जुड़े हैं. उसके बाद यहाँ पे एक हम मुख्यमंत्री साहब से भी मिल चुके थे. जब मुख्यमंत्री साहब शपथ ग्रहण किए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी वैकेंसी आएगी JPSC सहायक अभियंता की, लेकिन हमें कोई यहाँ पे वैकेंसी देखने को नहीं मिला. हमने एक्स पर भी अभियान कर लिया था, ट्विटर अभियान, ताकि हमारी वैकेंसी आ सके, लेकिन वहां से भी हमें सिर्फ आश्वासन मिला. उसके बाद हमने यहाँ पे मतलब विधानसभा में सवाल उठाने के लिए दिया था, वहां पे भी लिखा हुआ था कि विरुद्ध नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी. मतलब हमारा जो नियमावली है वो बना हुआ नहीं था, अब नियमावली बन चुकी है. नियमावली बनने के बाद भी हमें सिर्फ आश्वासन मिला है. उसके बाद अभी जो कल से मॉनसून सत्र स्टार्ट है, उसके लिए भी हमने अर्जी लगाई हुई है कि हमारी वैकेंसी आ जाए, लेकिन उसमें भी हमें सिर्फ और सिर्फ छलावा मिलेगा. तो अभी हम यहाँ इसलिए आए हैं, जैसे कहा जाता है ना झारखंड में एक कहावत है, कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड. मतलब हम वैकेंसी निकलवाने के लिए लड़ रहे हैं, वैकेंसी निकल जाए उसके बाद अच्छे से एग्जाम करवाने के लिए लड़ रहे हैं, एग्जाम हो जाए उसके बाद रिजल्ट के लिए लड़ेंगे, रिजल्ट हो जाने के बाद यदि पेपर लीक का मामला आता है तो यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं. तो हमारे नसीब में सिर्फ लड़ना लिखा है, वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही. तो इसलिए हम सब आए हैं कि झारखंड सरकार से, माननीय हेमंत सोरेन सर से रिक्वेस्ट है कि जो पेरेंट डिपार्टमेंट है सहायक अभियंता की भर्ती के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और कार्मिक विभाग दोनों
1: इतना बड़ा बात कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं.
7: मुस्कुरा रहे हैं मतलब हम सब थक के हार चुके हैं, मतलब परेशान है, अब क्या करें. 2019 के बाद से हमें आश्वासन मिला है, इतनी कोशिश हमने कर ली है, पत्राचार के माध्यम से जितने भी तरीके होते हैं सब हमने अपना लिया. उसके बाद यहाँ पे हताश लाचार होकर के आए हुए हैं. क्या
1: कितने साल के हैं सर?
7: हम 29 साल के हैं.
1: और
7: झारखंड में हर साल मतलब 10,000 से 12,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास हो रहे हैं. 40 से 45 कॉलेज हैं, IIT धनबाद है, NIT जमशेदपुर है, BIT मेसरा है, BIT सिंदरी है, झारखंड गवर्नमेंट कॉलेज, वहां से मैं पास आउट हूँ. लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हमें मौके ही नहीं दिए जा रहे हैं. 2019 के बाद से हम इस काबिल भी नहीं है कि हम फॉर्म भर सके. तो हमारी मांग ये है कि सरकार तक जितनी भी मांग है वैकेंसी निकाली जाए और एक प्रॉपर कैलेंडर जारी किया जाए, और उस कैलेंडर में सहायक अभियंता के बारे में भी मेंशन हो, और वो जो डेट मेंशन होगा उसको प्रॉपर तरीके से पालन किया जाए. और जब एग्जाम होता है तो ऐसा देखा जाता है कि पेपर लीक हो गया, OMR गायब हो गया. तो OMR में 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन होता है, ABCD, एक पांचवा ऑप्शन भी रहना चाहिए ई का, उसमें लिखा होना चाहिए अनअटेम्प्टेड. एग्जामिनेशन सेंटर में जो इन्विजिलेटर मौजूद होते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जो लड़का कोई क्वेश्चन को टिक नहीं करता है तो वो पांचवा ऑप्शन अनअटेम्प्टेड वाला टिक कर दे. इससे क्या होगा कि हमारा जो एग्जामिनेशन के थ्रू जो OMR सीट जाएगा वो खाली नहीं जाएगा, तो ऊपर से लांछन भी नहीं लगेगा.
1: इतने संघर्ष में घर कैसे चलता है, गृहस्थी कैसे चलता है?
7: घर गृहस्थी वो तो पिताजी अभी देख रहे हैं, पिताजी अभी किसान हैं, लेकिन पढ़ने के लिए जो भी होता है खुद से भी थोड़ा कोशिश करते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं. तो मिला जुला के अभी किसी तरह से चल रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा मैम. समय जवाब दे रहा है और हिम्मत भी जवाब दे रहा है. अब अंतिम प्रयास है हमारा इस समय कि इस आंदोलन के जरिए जितनी भी मांगे जा रही है उसमें हमारा भी मांग सुन लिया जाए तो फिर बहुत अच्छा हो.
2: What emerges from these conversations is a pattern. The protesters are not only talking about one recruitment body or one examination. They're talking about a system where vacancies are uncertain, recruitment cycles are unpredictable, and the wait can stretch for years. And when vacancies do arise, allegations of paper leaks and irregularities add another layer of frustration.
8: जो झारखंड की जो व्यवस्था है ना मैम, आप समझिए 2016 के बाद 17 के बाद दरोगा का वैकेंसी नहीं आया, 2015 के बाद झारखंड पुलिस का वैकेंसी नहीं आया, 2017 के बाद राजस्व कर्मचारी का वैकेंसी नहीं आया, 2017 के बाद पंचायत सचिव का वैकेंसी नहीं आया। आप समझिए कि जो इस राज्य में जो पैदा होता है, जो माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, उसका एक उम्मीद, एक विश्वास, एक भरोसा होता है कि इस राज्य में हम अपना बेटा बेटी को पढ़ाकर इस राज्य की में सेवा कराएंगे, सरकारी नौकरी लेकर राज्य की सेवा करेगा। मैम, यहाँ के बच्चों के सपने और उनके माँ बाप के सपने को कुचला जाता है, सरेआम कुचला जाता है।
2: द स्ट्राइकिंग पार्ट, द प्रोटेस्टर्स रिमेम्बर इट ऑल, द एग्जाम डेट्स, द कैंसल रिक्रूटमेंट्स, द विड्रॉन वैकेंसीज, द एलिजेड पेपर लीक्स, the years they spent preparing, because for many of them these are not isolated headlines, they are years of their lives. The JPSC-JSSC controversy may have brought Jharkhand's recruitment crisis into the spotlight, but on the ground the anger is much bigger. It is the anger of a generation that has spent years preparing for government jobs, only to find out that the vacancy itself may never arrive. With Preeti Chaudhary, Ashutosh Mishra for India Today.
9: Cutting across to Ashutosh Mishra, my colleague who continues to be in Ranchi. Ashutosh, you know, you've been speaking to officials, you've been speaking to students. It's over a decade. Rather, if you actually look back, nearly two decades, 26 years of Jharkhand, and what the youth have seen is vacancies are announced, but they are never honoured.
10: And the JSSS CGL itself is the big one of the biggest example, that one vacancy that was announced in 2014, 2015, and now the vacancy, the full, which started eventually with 700 seats, gone up to 1300, then 1900, 2200. By the end of 2025, then we see what happens, that people were selected through backdoor. Then it comes the major scam where you have the, you know, the mega mastermind villain like Abhay Tiwari. So all that takes plural exam. And remember, JSS and CGL, the combined graduate examination, that is one of the mass recruitment program of Jharkhand government. Because when it comes to JPSC, State Public Service Commission, where you hardly get vacancy for 50 seats, 60 seats in 4 to 5 years for the senior official. But large scale of appointment opportunity only comes to the CGL. Why we see the students still rigid on and still protesting? Because 2,200 seats, they have been recruited and there have been irregularities. Even if there are 30 to 40% people have been recruited through backdoor entry, it is injustice for the thousands of the students. And hence, they are seeking opportunity. Let there be cancellation, let there be a transparent investigation. And the biggest dilemma is that if you cancel the examination, what about those 2,200 people who already are now recruited, who are already working, who have taken EMI, who have taken loans? And that also makes a dilemma, because that was challenged to the higher court and Supreme Court. There was no relief to them. How can government roll back that whole examination? And that's perhaps in the deadlock, caught in the crossfire, as these innocent children who have been preparing over the year, they don't even know. I mean, there is one example, if I could say, one boy who was preparing for Daroga, the sub-inspector examination. And when the date came, he was 6 days shorter. So he was not eligible. Now, when he's still waiting for a Daroga vacancy to become a sub-inspector, his age is now past. He hardly has a month. And after that, he will not be even eligible for that examination. So this is not just the state of Jharkhand. If you see, these kind of examination irregularities, particularly in the several states of India, there's a similar story. And perhaps it was Gen Z, the Jantar Mantar inspired him to raise their voice. They raised their voice. JPSC cancel, investigation is underway. But again, the JSS contention on the JSS CGL continue to be a deadlock between the two, protesting student and the government. Preeti.
9: Thank you, Ashutosh, for joining us and giving us all the information there. Thank you. We're going to continue to go back to my colleague who's on the ground still reporting from Jharkhand, where the protest continues. But viewers, when you look back, one thing is very, very clear. Examinations in the state may be delayed, cancelled or reconducted, but the result of the Jharkhand government's own examination is clear. Failed. Failed to protect their future. Failed to deliver jobs to them. Failed Jharkhand's youth. And here is the chronology of this failure. 26,001 assistant teacher vacancies were announced in 2024. The examination was held, yet the appointment process remains incomplete even after 2 years. The Jharkhand teacher eligibility test for over 2,000 vacancies that was announced. States invited applicants. candidates applied, rules were struck down, and the process had to start once again. Then 5,000 police vacancies were announced in 2023. All of this after the last exam was conducted in 2019. But till now, no examination has taken place. It's 2026. The last exam was 2019. There are vacancies, but there is no examination. Let's talk about the LDC recruitment, the lower division clerk recruitment. 863 vacancies were announced in the year 2023. Vacancies announced first time since 2012. Applicants were invited four times, but eventually the vacancy was withdrawn. What happens to the age, money, preparation and dreams of candidates? Withdrawn. Another example, 408 stenographer vacancies were announced in the year 2023. Applications were accepted for over 2 years, only for the Jharkhand government to withdraw the recruitment. A vacancy, once again, a promise of opportunity, but here, a temporary advertisement for the government. Another example, 9,000 trained graduate teacher vacancies announced in 2016. 9,000 vacancies announced in 2016 for teacher graduates. Applications were accepted. In 2025, the government abolishes the post despite a severe shortage of teachers in the state as accepted by the government. Strange. How can a state simultaneously face a shortage of teachers and then eliminate thousands of teaching posts? Another example, 3,200 vacancies in the Jharkhand Urja Vikas Nigam Limited announced in 2015. Applications were then taken by the Electricity Board. But candidates are still waiting for the examination in 2026. This was vacancies that were announced all the way back in 2015. The government collected applications. Students invested their years. 11-year wait. Think about it, viewers. It's an entire phase of a young person's life, his or her youth. Let me give you another example. 600 vacancies in municipal corporation announced in 2022. The Municipal Corporation of Jharkhand announced 600 vacancies in 2022. Examination was hit by a paper leak and had to be reconducted again. Till now, the date of re-examination not announced. An examination that was cancelled in 2022 due to paper leak. Another example, JSSC Junior Engineer examination. Since the conception of the state of Jharkhand 26 years ago in 2000, only three examinations have taken place for junior engineers for this post. For an unemployed engineer, cancellation is not just a technical inconvenience. It now has meant years of preparation thrown away with no examination. Another example, 600 vacancies announced in 2023 for technical CGL. The examination eventually takes place in 2026. Yet candidates are still awaiting results. Another example, Jharkhand Eligibility Test 2026. The question paper fails to reach an examination center. Exam cancelled. No re-announcement of dates. Massive irregularities reported in PGT recruitment, CDPO recruitment, Forest Ranger Officer examination, nursing recruitment, Assistant Section Officer examination. All of this is not merely a recruitment crisis in the state. This is a crisis of the future of Jharkhand. And who pays the price? Not the file, not the department, not the notification, not the government of Jharkhand. It is the student who spends years preparing. It is the family that spends its savings on coaching. It is the graduate who waits instead of taking another opportunity because he's hoping to convert another exam, which never happens. A vacancy that is announced, which is never delivered. It is the young person whose age keeps increasing while recruitment keeps getting delayed. While we must speak about the irregularities in the JPSC and the JSSC, we must also recognize that the rot runs much deeper. What we see in Jharkhand is merely a symptom of a rancid compromise system, a system that has repeatedly failed the young people of the state since its conception in 2000. And sadly, Jharkhand is not an anomaly. This is a wider crisis that extends beyond one state, one institution or one government. There are other states where the same rot has taken root. And we at India Today will speak about them very soon. Thank you for watching.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी है जो इस लोकसभा में गृह मंत्री जी के वक्तव्य को या गृह मंत्री जी के जवाब को लेक्चर कह रहा हो, तो उसको इससे साफ है कि इस लोकतंत्र के या इस पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं। जिस तरह से हंगामा करना, जिस तरह से पूरा सदन को वॉश आउट कर दिया, जब गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं और सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, यही मांग थी और इसको गृह मंत्री जी ने समय दे दिया 3 बजे तक, जबकि कल संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर साहब ने भी कहा था। तो इससे साफ है कि इनके पास कोई जवाब सुनने के लिए नहीं है। वो समझते हैं कि शायद चर्चा होगी विस्तार से तो रांची की भी चर्चा होगी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भी चर्चा होगी, कर्नाटका की भी चर्चा होगी, केरला की भी चर्चा होगी, आखिर वहां भी तो परीक्षाएं लीक हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये विषय किसी राज्य का नहीं है, किसी दल का नहीं, इसीलिए कठोर कानून बनाया। लेकिन अब जिस तरीके से जो भाषा, अमर्यादित भाषा राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता होकर के कर रहे हैं, गृहमंत्री जी है, देश के गृहमंत्री हैं, जिन्होंने धारा 370-35 से समाप्त करने का प्रस्ताव किया, जिन्होंने नक्सल बात को समाप्त करने के लिए संकल्प लिया उसको पूरा किया, और आज देश की जनता आज के इस राहुल के बयान से जान चुकी है कि कौन भाग रहा है। आज विपक्ष भाग रहा है इस चर्चा से, गृहमंत्री के जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो भाग रहा है, क्योंकि उसको जब एक एक जवाब मिलेगा तो इससे नहीं चलता है। अगर आप न भी आप सहमत हो तो सदन तो चलने दें।

0: interest on your show today, he should condemn and he should criticize that particular statement. About the other issues, if you have certain reservations, that is the reason why we are going in for JPC. Going in for JPC is not a weakness of the government. We had gone on for a JPC on the Buck Amendment Act also. And yet, when
1: Forget the opposition for a moment. Your own allies, chief ministers of Christian majority states, for example, are extremely worried. Nagaland chief minister, Mizoram chief minister, Meghalaya chief minister. They've all raised multiple concerns over FCRA amendment. If the bill is truly religion neutral, as the BJP insists it is, why are even your own allies and your own partner governments so worried?
0: No. You know, Gaurav, my simple question to you, is proselytization an issue in the country or not? Is demography distortion silently taking place, funded by unknown sources or not? So if there are concerns which some of our allies have, they will be addressed. We are talking to them. But, you know, this opposition should not be allowed to mislead the country on a very important issue. And I think that is my moot point. On your show today, Anshul Abhijit should condemn the statement by Relly Moore, and he should tell the country that there is nothing of that sort in the bill. There is no provision for religious takeover of minority institutions. It is agnostic.
1: Since you've raised a direct point, before I bring in Mr. Satendra Singh,
0: you know, circumvents.
1: Yeah, Anshul, you want to respond to Tuhin?
2: Yeah. No. I'm not in proxy for anyone. I'm a spokesperson for the Congress Party. You brought in some foreign voices and you asked me to comment. It's absolutely ridiculous. Why should I care? Why should I comment on someone? I don't even heard what he said or what he didn't say or anyone, sir. I am here as a spokesperson, Gaurav. I've been invited on the show to address the opposition's concerns, to spell them out, the Congress's concerns. It doesn't matter what anyone has said. I don't even know what he said.
1: US lawmaker interfering in India's internal affairs or commenting on India's laws. Fair enough, the government or the ambassador has responded. But Satendra Singh ji, P. Chidambaram, jab wo Bharat ke grihmantri the, 2011-12 ki baat hai, unka ye kehna tha, jo Kudan Kulan ke protests hue the, usme jo videshon se paisa aaya tha NGOs ke liye, wo Kudan Kulan protest mein bhej diya gaya. Ministry of Home Affairs, aur wo Congress ki sarkar thi us samay, कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को उन्होंने देखा था, कहां से पैसा आया, कहां वो पैसा गया, कई लाइसेंस कैंसिल हुए थे, कुछ रिन्यू नहीं किए गए थे. तो जो पुराने कानून थे, क्या वो सही नहीं थे? उनमें ये इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही है 2026 में?
3: देखो, पुराना कानून सही था. जिस आप 2010-11 के प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं जी, उसके इन्वेस्टिगेशन में ये पता लग रहा था कि जो एनजीओ है उनकी रियल फंडिंग तो किसी यूएसए से हो रही थी. यूएसए से फंडिंग जर्मनी गई, जर्मनी से नीदरलैंड गई, और नीदरलैंड के बाद किसी और फ्रंट एनजीओ ने फिर यहाँ के एनजीओ को पैसा भेजा. और आपको याद हो तो जो ही एनजीओ पे एक्शन शुरू हुआ, वो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो गया था. कहां तो लोग दल समाधि लगा रहे थे, पानी में बैठे थे, वो सब चले गए. इसका मतलब जो बाहर से पैसा आता है उसका मिसयूज होता है, कई बार उसकी इंटेंट ही गलत होती है. तो ये देखते लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है. तो ये जो नया बिल आ रहा है, ये पुराने जो एक्सपीरियंस है उसमें जो लूपहोल्स है उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है. लोग इसी तरह इवॉल्व होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार इवॉल्व किए जाते हैं. तो इसमें मुझे नहीं लगता है गलत है.
1: नहीं, हो सकता है जेपीसी में ये सारे एस्पेक्ट्स निकल कर आएंगे, लेकिन ये इतना बवाल इस पर जो हो रहा है कि विपक्ष कह रहे हैं कि ये बिल वापस ले लेना चाहिए. अब देखते हैं जेपीसी में क्या निकल कर आता है. बट सिद्धार्थ, फॉर अ मोमेंट, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन फंडिंग ऑफ सर्टन एनजीओज इन दिस कंट्री दैट फ्यूल प्रोटेस्ट, वेदर इट वॉज द कांग्रेस गवर्नमेंट अर्लियर और अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट नाउ, रिमेंबर वॉट कार्लो लोम्बार्डी, दैट एनालिस्ट एंड एडवाइजर ऑन इंडिया इटली रिलेशंस, सेड दैट 1983 यूएस क्रिएटेड what was known as the National Endowment for Democracy, or NED. Its co-founder, Alan Weinstein, he later said that much of what the NED did was very similar to what CIA used to do 25 years earlier, indicating perhaps that foreign-funded NGOs may be used or can serve as instruments of a country's foreign policy. Is that one of the government's key concerns right now?
4: Well, it is a concern, and I'm reminded, Gaurav, and I'm sure you reported and are recollecting that as well. The IB report in 2014-15, which was a 21-page report, and many of us reporters had access

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: move from there to the big story that continues to develop in Jharkhand, where there is no end to the protest. And after the August 10 crackdown, the protesters have become even more determined to take their battle over exam irregularities and filling up of vacant pros. Amidst the stir, the Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has projected his government as being responsive to students, saying more than 8,500 suggestions have been received through a new portal, which he says is aimed at reforming the exam system. The electricity supply, though, at the protest site was cut off last night. Devendranath Mahato's hunger strike now has entered its 11th day. Mahato has asserted that his hunger strike will continue. And a short while ago, while he was on his hospital bed, I spoke to Jharkhand's face of the protest, Devendranath Mahato. Listen in. Joining me now is a very special guest, the man who's become the face of the students' agitation in Jharkhand, the JKLM leader, the activist Devendra Mahato, now on the 9th day of a hunger strike over the irregularities in the Jharkhand recruitment examination. Mahatoji, aap wahan lete hue hain, hospital mein hain, do din se aapko hospital mein rakha gaya hai. Kya aap ab taiyar hain is bhookh hartal ko todne ke liye ya ye jari rahega?
1: Sir, halat mein tod sakte hain sir. Aaj mera garmen din hai aur sadar hospital mein is bhookh hartal jari hai. Aaj jo 10 tarikh ko vidhan sabha mein jo लाखों की तादाद में जो युवा आए और आंदोलन के साथ खड़ा रहे, ये मेरे लिए सिर्फ आंदोलन नहीं है बल्कि उनको विश्वास और उम्मीद पर एक मेरा जिम्मेदारी है।
0: भले अभी मैं आप कह रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वहां सरकार कह रही है कि वो आपकी मांगे, ज्यादातर सभी मांगे पूरी की गई है। कौन सी वो मांग है जो आप कह रहे हैं नॉन नेगोशिएबल?
1: सरकार मैं सरकार से मैसेज भेज रहा हूँ, हॉस्पिटल में कई सत्ता पक्ष से विधायक और मंत्री जन हमसे मिल रहे थे, हमने उनको कहा है कि जो मांग पत्र हमने सौंपा है उसमें से आप जारी कर दीजिए कि काम जाना गया अभी तक के सिर्फ आश्वासन को और सिर्फ बयानों से मानी गई है।
0: नहीं, कौन सी वो मांग है जो नॉन नेगोशिएबल है? सीबीआई प्रोब या जितने भी एग्जाम्स जो जिसमें धांधली हुए सभी को कैंसिल करना है, क्या कौन सी मांग है जिसकी जिस पर आप बिल्कुल अड़े रहेंगे?
1: ये सरकार भले दावा कर रही है कि मैं 98% मांग पूरी कर ली है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार 50% मांग भी नहीं मानी वाली है।
0: तो ये आंदोलन क्या आप हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों के खिलाफ ये आंदोलन है, पूरी जो सिस्टम है उनके खिलाफ आंदोलन है, हेमंत सोरेन खुद के खिलाफ है? क्योंकि मैंने देखा है कि आप तो शिब्बू सोरेन को बहुत मानते हैं, उनके पोस्टर्स रखे थे। इज दिस अगेंस्ट हेमंत सोरेन या पूरे सिस्टम या गवर्नमेंट के खिलाफ?
1: देखिए, सबसे पहले हम लोग सिस्टम सिस्टम को शिकार हैं, तो सिस्टम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और सिस्टम सुधार की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार सिस्टम सुधार में नाकाम साबित होगी इतना हम सरकार से एजेंट जाएंगे। फिलहाल अभी तक हम लोग सरकार के विरोध में नारे तक नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर सरकार हमारे सिस्टम सुधार में नाकाम होगी तो बिल्कुल हम लोग सरकार उस सरकार पर फिर उठाव फेंकने की बात करेंगे। जो सरकार किस काम की जो युवाओं को संतुष्ट न कर पाए, आज मैं हॉस्पिटल के बेड के बिस्तर पे हूँ, लेकिन मेरा आत्मा, मेरा संघर्ष का संकल्प अभी भी धरना स्थल पे है, अभी भी आंदोलन स्थल पे है और ग्यारहवें दिन का भूख हड़ताल से मेरा आंदोलन का देरी से इतना शारीरिक पीड़ा नहीं है, इससे अधिक मेरा मानसिक पीड़ा है। मैं आंदोलन से इसलिए मैं आज हॉस्पिटल के प्रभारी को एक आवेदन भी लिखा है, मुझे सत्याग्रह आंदोलन स्थल जाने की अनुमति दिया जाए। आखिर हमको हॉस्पिटल में क्यों रखा गया है? या तो हॉस्पिटल में हमको रिपोर्ट दे भाई हमारा किडनी खराब है, मेरा लिवर खराब है, मेरा हार्ट खराब है।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: This flyover in Bhopal's MP Nagar was inaugurated in January 2025 by Chief Minister Mohan Yadav. Built at a cost of 121 crore rupees to ease traffic congestion in one of the city's busiest areas, the flyover today is riddled with potholes.
1: पूरी की पूरी सड़क पे दूर तक आपको दिख जाएंगे कि गड्ढे जो हैं बड़े गड्ढों से लेके छोटे गड्ढों तक यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और जो गुजरने वाले यहाँ से दोपहिया वाहन है उनके लिए ये ज्यादा बड़ा खतरा है। जो चौपहिया वाहन है वो तो यहाँ से निकल जा रहे हैं तेजी से फर्राटा भर के, लेकिन दोपहिया वाहन जो है वो अगर इसमें पड़ते हैं तो फिर उनके सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये फ्लाईओवर के जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं वहीं पर ये गड्ढा बना हुआ है।
0: The potholes are not limited just to the flyover. The condition of the roads under the bridge are no different.
2: काफी टाइम होगा सर, गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
3: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की, कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं देता, पलटते हैं। कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे।
0: The real question is, how does a road disintegrate so easily in less than 2 years? Why is there no proper maintenance? And who is sleeping at the wheel? With Ravish Pal Singh in Bhopal, Bureau Report, India Today.

राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी है जो इस लोकसभा में गृह मंत्री जी के वक्तव्य को या गृह मंत्री जी के जवाब को लेक्चर कह रहा हो, तो उसको इससे साफ है कि इस लोकतंत्र के या इस पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं। जिस तरह से हंगामा करना, जिस तरह से पूरा सदन को वॉश आउट कर दिया, जब गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं और सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, यही मांग थी और इसको गृह मंत्री जी ने समय दे दिया 3 बजे तक, जबकि कल संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर साहब ने भी कहा था। तो इससे साफ है कि इनके पास कोई जवाब सुनने के लिए नहीं है। वो समझते हैं कि शायद चर्चा होगी विस्तार से तो रांची की भी चर्चा होगी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भी चर्चा होगी, कर्नाटका की भी चर्चा होगी, केरला की भी चर्चा होगी, आखिर वहां भी तो परीक्षाएं लीक हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये विषय किसी राज्य का नहीं है, किसी दल का नहीं, इसीलिए कठोर कानून बनाया। लेकिन अब जिस तरीके से जो भाषा, अमर्यादित भाषा राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता होकर के कर रहे हैं गृहमंत्री, देश के गृहमंत्री हैं जिन्होंने धारा 370-35 से समाप्त करने का प्रस्ताव किया, जिन्होंने नक्सल बात को समाप्त करने के लिए संकल्प लिया उसको पूरा किया, और आज देश की जनता आज के इस राहुल के बयान से जान चुकी है कि कौन भाग रहा है। आज विपक्ष भाग रहा है इस चर्चा से, गृहमंत्री के जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो भाग रहा है, क्योंकि उसको जब एक एक जवाब मिलेगा तो इससे नहीं चलता। अगर आप न भी आप सहमत हो तो सदन तो चलने दें।

0: are watching India Today.
1: Hi there, you're watching India Today. My name is Harshit Ahuja. Let's start this edition of news with a special report from Jharkhand. Now, as we know, the protests may have erupted over the JPSC, JSSC irregularities, but on the ground, the anger runs much deeper than those issues. For thousands of young Jharkhandis, this is about jobs, vacancies, and years of waiting. India Today has been on the ground in Ranchi speaking to the protesters at the heart of this agitation. A story of generation of waiting for jobs that may never arrive. Take a look at this India Today special.
2: The Jharkhand protest is not just about exams. On the streets of Ranchi, it's a protest over jobs, vacancies and years of waiting. For thousands of young Jharkhandis, government recruitment has become a cycle of preparing, appearing, waiting and starting all over again. India Today has been on the ground speaking to protesters at the heart of this agitation. And behind the anger over JPSC, JSSC irregularities lies a much bigger crisis. The crisis of jobs. 26,001 assistant teacher vacancies were announced. Exams were held for it in 2024. 2 years later, appointments still remain incomplete. 9,000 TGT vacancies were announced in 2016. And these posts were abolished in 2025. For an aspirant, every vacancy is a chance. But protesters say in Jharkhand, even that chance has become uncertain.
3: हम 20 साल से परीक्षा का तैयारी करते हैं
4: कितने साल से कर रही हैं आप
3: 20 साल से कर रहे हैं मेरा 39 साल हो गया है मैंने हाई स्कूल का भी परीक्षा क्वालीफाई किया सिलेक्टेड कैंडिडेट से 20 नंबर अधिक नंबर लाया इसके बावजूद भी मेरा नियुक्ति नहीं होता है सहायक आचार्य का परीक्षा लिखा उसमें भी क्वालीफाई हूं आपके कैमरे में भी मैं दिखा सकता हूं इसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं होता है जबकि 14,000 सीट खाली रहता है 26,000 एक पद पर बहाली निकलता है तो उसको विज्ञापन एक बार हुआ परीक्षा एक बार हुआ तो रिजल्ट एक बार होना चाहिए नियुक्ति एक बार होना चाहिए लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में यहां सभी नियुक्तियां बटते हैं 5 बार नियुक्ति पत्र सहायक आचार्य का बट गया लेकिन अभी तक 26,000 एक पद पूरा नहीं हुआ ये भी पूरी तरह से सौदा करते हैं
2: एंड द प्रॉब्लम इज नॉट लिमिटेड टू द एजुकेशन सेक्टर 5,000 police vacancies were announced in 2023, 4 years after the last exam. But these exams were never held. Thousands of young men and women prepare for these posts, often for years. And for those waiting against an age limit, every year matters.
5: दरोगा बनने का तो मैम ये वैकेंसी आया ही नहीं और मेरे पिताजी तो चले गए बट ये सपना सपना ही रह गया अभी हमारा मतलब कि ऐसा है कि करे कि नहीं करे करे कि नहीं करे
4: अभी कितना एज हो गया
5: मैम मेरा अभी 28 हो गया मैम तो अभी चीजें ऐसी हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा आगे कुछ दिख नहीं रहा है ऑप्शन नहीं है ब्लैंक हो गया सब कुछ और अभी क्या ही मैं बताऊं जेपीएससी जेएसएससी सब में धांधली है कम्प्लीटली छोटा से छोटा पोस्ट भी यहाँ पे पता चलता है कि सोल्ड आउट हो जाता है तो कैसे बिलीव करेगा मैम हम लोग यहाँ के मूल निवासी है अब हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं होता है कितना भी स्किल्ड हो हम लोगों को एक मतलब कम अमाउंट में मिलता है तो हम लोग उतना में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हमारे परिवार हैं हम लोगों को उम्मीद है अब इस स्टेट में रह रहे हैं मैम और इसी स्टेट का कोई एग्जाम नहीं आ पा रहा है अब बताइए
4: 10 साल से कोई वेकेंसी नहीं आया है दरोगा
5: मैम
4: अब 19 में आप दरोगा का एग्जाम तब आप नहीं दे पा रहे थे एज नहीं था और 10 साल वेट किया अभी तक कोई वैकेंसी नहीं
5: आई नहीं है मैम मतलब आप समझिए ना कि अभी जो है 30 साल तक का उसका रहता है 21 से 30 क्योंकि जनरल का कैटेगरी वही रहता है ओबीसी में 2-3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है तो ओबीसी में क्रीमी लेयर बनाओ ये करो वो करो बहुत सारे उसमें होते हैं तो मैम अब 2 साल के बाद मैं एलिजिबल भी नहीं रहूंगा बताइए मतलब एक मतलब पूरा का पूरा एक आदमी का एज निकल गया लेकिन वैकेंसी तक नहीं आ रही है और उसमें भी सरकार जो आश्वासन देती है कि अब आएगा और बम्पर बढ़तियां आ रही है। कहाँ है मैम, कहाँ है, कुछ दिखता नहीं है। हम लोग मतलब परेशान हताश इस प्रकार से है ना, प्रताड़ित इस कदर से हो गए कि रात रात में हम लोग को तिरपाल भी ऐसे लेकर के खड़ा होना पड़ रहा है ना, तो हम लोग रह रहे पूरा भीगा हुआ हूँ मैम अभी। बट क्या करूँ, हम लोगों के पास कोई होप नहीं है, होप यही है कि लड़ना है।
2: The vacancies that candidates wait for are often the difference between staying in the race and being pushed out of it. Take the Forest Ranger Officer Recruitment Exam for instance. It was held for 170 posts in 2025. But candidates allege that few candidates were made to memorize question papers in hotels.
4: Where are you from?
6: We are from Palamu.
4: इतना दूर यहाँ आए हैं इसी चीज के लिए?
6: स्टूडेंट है ना
4: आप, स्टूडेंट है और इसी चीज के लिए?
6: हाँ, इसी चीज के लिए आए हुए,
4: इसीलिए सीआईडी पे भरोसा नहीं है?
6: सीबीआई चाहिए हमें।
4: जो यहाँ पर बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि 19 से सारे एग्जाम रद्द करिए, पर 19 से सारा एग्जाम रद्द करना कैसे होगा, लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया।
6: मैम हम लोग एफआरओ का भी दिए हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, उसका भी पेपर लीक हुआ है, उसमें भी मतलब धांधली है,
7: लिखवाया जा रहा है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो मेंस की कॉपियां हैं एक प्राइवेट एजेंसी के प्राइवेट रूम में होटल में पाई गई, उनके कंप्यूटर में पाई गई, तो ऐसा कहां रूल है? मेंस की कॉपियां जब भी स्टूडेंट मेंस लिखते हैं उसको मेंस लिखने के बाद कॉपियां जो है वो स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है, आयोग की जेपीएससी के स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है। बट एफआरओ मेंस की आंसर राइटिंग की कॉपियां जो है जो मेंस के एग्जाम में लिखी गई थी एक प्राइवेट एजेंसी के निजी कंप्यूटर लैपटॉप पे वो कॉपियां पाई गई, तो कैसे हुआ ये सिस्टम में ऐसा लूप होल है कि ऐसा सुनने में आता है। लोग एक बच्चा बोलेगा कि यहाँ की मेंस जो है स्टूडेंट तो हॉल में लिखते हैं ना, और जो सेटर लोग हैं वो होटल में लिख बैठकर मेंस की कॉपियां लिखते हैं और सिलेक्ट होते हैं। मैम
2: एंड देयर आर मोर एग्जांपल्स। 843 एलडीसी वैकेंसीज वर अनाउंस्ड इन 2023। This was the first vacancy announcement since 2021. Applications were invited 4 times, but the vacancy was later withdrawn. 408 stenographer vacancies were announced in 2023, and the applications accepted for 2 years, but the vacancy later withdrawn.
4: कहाँ से आए हैं सर आप?
8: हम ये बोकारो चास।
4: बोकारो से आए हैं यहाँ पर, क्यों पहुँचे हैं यहाँ?
8: मैम एक्चुअली मैटर तो मेरा जेपीएससी का भी है, जेएसएससी का भी है, लेकिन हमारा जो पर्सनल अभी मैटर है वो आंसू लिपिक स्टेनोग्राफर को रिलेटेड है। स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी 2022 में आया था वो अभी 2026 हो गया, अभी तक वो कम्प्लीट नहीं हो पाया है, और अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ और एग्जाम को रद्द कर दिया गया है वापस। एलडीसी का एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया मैम, जिसमें सेटिंग नहीं हो पाती है ना।
4: सर्विस कमीशन,
8: यस मैम, यस
4: जेएसएससी की बात कर रहे हैं, झारखंड स्टाफ कमीशन।
9: ये जो आंसू लिपिक है जिसको स्टेनोग्राफर कहते हैं, ये 2022 में आता है, 23 में परीक्षा ली जाती है, फिर इसको रद्द कर दिया जाता है, फिर 25 में आता है, फिर 26 में इसको रद्द कर दिया जाता है। जब आयोग से हम लोग पूछते हैं कि आखिर रद्द क्यों हो रहा, तो आयोग कहता है कि आप किसी और चीज का तैयारी कर लीजिए। ये मैं बताना चाहूंगा, एक स्टेनोग्राफर तब बनता है जब 5-6 साल तैयारी करता है, जब वो शॉर्ट हैंड लिखता है। शॉर्ट हैंड एक स्किल है, शॉर्ट हैंड लिखने के बाद भी एक हिंदी टाइपिंग ये है वो भी स्किल है। तो हम आयोग,
4: आप जेएसएससी का एग्जाम दिए?
9: जी जी जी। तो हम आयोग को बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह का बहाली लाते हैं, फिर रद्द करते हैं, फिर लाते हैं, फिर रद्द करते हैं, तो स्टूडेंट से आप एग्जामिनेशन फी वसूलने के लिए आ रहे हैं, और विज्ञापन अगर निकाल रहे तो आप नशा में निकाल रहे हैं।
2: And even when an examination is finally held, the ordeal may not end there. The exam has been held only thrice since the creation of the state in the last 17 years. The last exam was cancelled over paper leaks.
10: विक्रम कुमार है, मैं देवघर से आया हूँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ।
4: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, इतना दूर क्यों आए हैं सर?
10: मैम बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने को। पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ है सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में। 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई है। तो हमने आरटीआई के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली होता है। इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी टेबल्स होते हैं वहाँ पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो डीओपीटी में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ से वैकेंसी जारी होती है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, और इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है। और जो प्रॉपर लेटर के माध्यम से हम सब देखिए, ये कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, यहाँ पे जाके भी वैकेंसी के लिए हमने अर्जी दी हुई थी, ये विभाग के अंदर टोटल सीट है। उसके बाद यहाँ पे पथ निर्माण विभाग में भी अर्जी दी हुई थी, ये भी देख लीजिए, सारा कोई ऑफिशियल लेटर, हमने पत्राचार का जितना भी माध्यम था सारा अपना लिया, उसके बाद हम फिजिकल प्रोटेस्ट में आए हुए हैं यहाँ पे कार्मिक।
4: ये पूरा काम करने के बाद, ये सारा चिट्ठी विट्ठी लिखने के बाद फिर प्रोटेस्ट से जुड़े हैं?
10: फिर प्रोटेस्ट से जुड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हम मुख्यमंत्री साहब से भी मिल चुके थे, जब मुख्यमंत्री साहब शपथ ग्रहण किए थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी वैकेंसी आएगी जेपीएससी सहायक अभियंता की, लेकिन हमें कोई यहाँ पे वैकेंसी देखने को नहीं मिला। हमने एक्स पर भी अभियान कर लिया था, ट्विटर अभियान, ताकि हमारी वैकेंसी आ सके, लेकिन वहां से भी हमें सिर्फ आश्वासन मिला। उसके बाद हमने यहाँ पे मतलब विधानसभा में सवाल उठाने के लिए दिया था, वहां पे भी लिखा हुआ था कि विरुद्ध नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी, मतलब हमारा जो नियमावली है वो बना हुआ नहीं था, अब नियमावली बन चुकी है, नियमावली बनने के बाद भी हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। जैसे कहा जाता है ना, झारखंड में एक कहावत है, कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड, मतलब हम वैकेंसी निकलवाने के लिए लड़ रहे हैं, वैकेंसी निकल जाए उसके बाद अच्छे से एग्जाम करवाने के लिए लड़ रहे हैं, एग्जाम हो जाए उसके बाद रिजल्ट के लिए लड़ेंगे, रिजल्ट हो जाने के बाद यदि पेपर लीक का मामला आता है तो यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं, तो हमारे नसीब में सिर्फ लड़ना लिखा है, वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही, तो इसलिए हम सब आए हैं कि झारखंड सरकार से, माननीय हेमंत सोरेन सर से रिक्वेस्ट है कि जो पेरेंट डिपार्टमेंट है सहायक अभियंता की भर्ती के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और कार्मिक विभाग दोनों,
4: इतना बड़ा बात कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं,
10: मुस्कुरा रहे हैं, मतलब हम सब थक के हार चुके हैं, मतलब परेशान है, अब क्या करें, 2019 के बाद से हमें आश्वासन मिला है, इतनी कोशिश हमने कर ली है, पत्राचार के माध्यम से जितने भी तरीके होते हैं सब हमने अपना लिया, उसके बाद यहाँ पे हताश लाचार होकर के आए हुए हैं। क्या
4: कितने साल के हैं सर?
10: हम 29 साल के हैं, और झारखंड में हर साल मतलब 10,000 से 12,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास हो रहे हैं, 40 से 45 कॉलेज हैं, IIT धनबाद है, NIT जमशेदपुर है, BIT मेसरा है, BIT सिंदरी है, झारखंड गवर्नमेंट कॉलेज, वहां से मैं पास आउट हूं, लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हमें मौके ही नहीं दिए जा रहे हैं, 2019 के बाद से हम इस काबिल भी नहीं है कि हम फॉर्म भर सके, तो हमारी मांग ये है कि सरकार तक जितनी भी मांग है वैकेंसी निकाली जाए और एक प्रॉपर कैलेंडर जारी किया जाए, और उस कैलेंडर में सहायक अभियंता के बारे में भी मेंशन हो, और वो जो डेट मेंशन होगा उसको प्रॉपर तरीके से पालन किया जाए।
2: What emerges from these conversations is a pattern. The protesters are not only talking about one recruitment body or one examination. They're talking about a system where vacancies are uncertain, recruitment cycles are unpredictable, and the wait can stretch for years. And when vacancies do arise, allegations of paper leaks and irregularities add another layer of frustration.
11: जो झारखंड की जो व्यवस्था है ना मैम, आप समझिए 2016 के बाद, 17 के बाद दरोगा का वैकेंसी नहीं आया, 2015 के बाद झारखंड पुलिस का वैकेंसी नहीं आया, 2017 के बाद राजस्व कर्मचारी का वैकेंसी नहीं आया, 2017 के बाद पंचायत सचिव का वैकेंसी नहीं आया। आप समझिए कि जो इस राज्य में जो पैदा होता है, जो माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, उसका एक उम्मीद, एक विश्वास, एक भरोसा होता है कि इस राज्य में हम अपना बेटा बेटी को पढ़ाकर इस राज्य की में सेवा कराएंगे, सरकारी नौकरी लेकर राज्य की सेवा करेगा। मैम, यहाँ के बच्चों के सपने और उनके माँ बाप के सपने को कुचला जाता है, सरेआम कुचला जाता है।
2: The striking part, the protesters remember it all. The exam dates, the cancelled recruitments, the withdrawn vacancies, the alleged paper leaks, the years they spent preparing, because for many of them, these are not isolated headlines. They are years of their lives. The JPSC-JSSC controversy may have brought Jharkhand's recruitment crisis into the spotlight. But on the ground, the anger is much bigger. It is the anger of a generation that has spent years preparing for government jobs, only to find out that the vacancy itself may never arrive. With Preeti Chaudhary, Ashutosh Mishra for India Today.
1: Now, for 3 weeks, the parliament has been paralyzed by a political deadlock. But beyond the political slugfest, there is another casualty, and that happens to be parliamentary productivity. Both houses have lost a cumulative of 144 hours of scheduled business. The government passed 19 bills, but several saw very little or no debate at all. The political deadlock may be between the government and the opposition, but the cost is ultimately borne by the taxpayer. Take a look at this report.
12: देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो।
13: I'm allowing you to KC Venugopal ji.
14: कांग्रेस पार्टी और पार्टी लोगों ने मांग किया
13: For the last 3 weeks, Parliament has been locked in a political deadlock. The opposition and treasury benches have been at loggerheads over a range of issues, with repeated disruptions bringing proceedings to a near standstill. At the heart of the standoff is the July 28th police crackdown on protesting students in Delhi. The opposition has been demanding a statement from Home Minister Amit Shah, seeking answers on the police action and allegations of pellet gun use. A day before Parliament is set to be adjourned, Sanadine, Shah made a fresh attempt to break the deadlock.
14: NEET Andolan ke chhatra pradarshan par sabhi prakar ki charcha karne ke liye sarkar taiyar hai aur charcha ke liye samay sunishchit kiya jaye aur vipaksh taiyar ho jaye. Pehle to ye yahi mang kar rahe the. हमने हाँ बोल दिया. मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूँ.
13: बट लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी डिसमिस द ऑफर.
15: इस 20 दिन के लिए गायब हो गए. यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह. उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए. तो गुब्बारे में से गैस निकल गई. अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है. अमित शाह हैज नो करेज. द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया has no courage. He cannot come to the house.
13: The opposition has also insisted on a discussion over the alleged Ram Temple donation irregularities, calling the demand non-negotiable. But while the two sides trade charges, there is another casualty of the deadlock: parliamentary productivity. Because every hour lost in parliament comes at a cost. Running parliament for 1 minute costs 2.5 lakh rupees. Every hour costs 1.5 crore and running parliament for 6 hours a day costs a whopping 9 crore rupees. And the numbers from the current session paint a stark picture. Both houses were scheduled to function for 96 hours each, but the Lok Sabha and Rajya Sabha functioned for just 16.7 and 31.2 hours respectively. That means 79.3 hours were lost in the Lok Sabha and 64.8 hours in the Rajya Sabha. At a cost of 1.5 crore rupees per hour, as per government data, Parliament lost an estimated 216.15 crore rupees between July 20th and August 10th.
16: प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए.
13: एंड येट पार्लियामेंट वॉज नॉट कम्प्लीट विदाउट लेजिस्लेटिव बिजनेस. द गवर्नमेंट मैनेज्ड टू पुश थ्रू 19 बिल्स ड्यूरिंग द सेशन.
16: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रश्न ये कि खंड 2 से 5 विधेयक.
13: बट द मैनर ऑफ पैसेज हैज रेज्ड क्वेश्चंस. सेवरल बिल्स वर पास्ड with little to no debate. At one point, 7 bills were passed in just 36 minutes. And perhaps the biggest casualty of the logjam has been question hour. Almost no question hour took place. Parliament is not just where political battles are fought. It is where laws are debated, ministers are questioned, and the government is held accountable. The deadlock may be between the opposition and the government, but the cost is ultimately being borne by the taxpayer. Bureau report, India Today.
1: The Tamil Nadu government has passed an anti-delimitation resolution. The DMK has for now supported the resolution, but has come with its terms and conditions. Take a look at this report.
17: The government will ensure that no state, whether it's Kerala, Tamil Nadu,
18: Karnataka.
13: The Tamil Nadu Assembly passes a resolution on delimitation. The resolution was passed on three major points. It says the 543 Lok Sabha seats must remain fixed. There should be no change in the state-wise allocation of Lok Sabha seats, and 33% women's reservation should be provided in state assemblies.
18: தற்போதுள்ள மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையான 543 என்ற அளவிலேயே நிரந்தரமாக வைப்பதற்கும் மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டத்தினை அமல்படுத்த மேலும் காலதாமதம் இல்லாமல் தற்போது 543 என்ற நிலையிலேயே மூன்றில் ஒரு பங்கு தொகுதி மகளிர் தொகுதிக்கு வருகின்ற 2029 பாராளுமன்ற தேர்தலில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற முன்மொழியும் தீர்மானிக்கப்பட்டுச்சு.
13: The Congress, the DMK and left parties supported the resolution.
19: திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 33% மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை நாங்கள் முழுமையாக ஆதரிக்கின்றோம், வரவேற்கின்றோம். ஒருவேளை மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்காக டிலிமிடேஷன் எக்ஸசைஸ் செய்யப்பட்டால் 1971 மக்கள் தொகை அடிப்படையிலேயே செய்ய வேண்டும்.
13: The AIADMK, PMK and BJP rejected the resolution.
20: இந்த சூழ்நிலையில் மத்திய அரசு கொண்டு வர உள்ள தொகுதி மறுஅறையில் தமிழ்நாட்டிற்கு சாதகமா உள்ளதா பாதகமா உள்ளதா என்பது பற்றி எதுவுமே தெரியாத நிலையில் அரசியல் காரணங்களுக்காக தமிழக வெற்றி கழக அரசு கொண்டு வந்த இந்த தீர்மானத்தை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்க்கின்றது. அதே நேரத்தில்
13: The DMK stand is crucial as far as passage of the delimitation bill by Lok Sabha is concerned. Does the party's support for the resolution against delimitation mean that it has finally made up its mind? The answer is awaited. With Apurva Jayachandran, Anaga Keshav and Pramod Madhav, Bureau Report, India Today.
1: Now, major leadership transition is taking shape at one of India's biggest business houses. After nearly a decade at the helm of Tata Sons, N. Chandrasekharan is set to step down as the chairman when his current term ends in February 2027, putting the spotlight firmly on who succeeds him and what the change means for the Tata empire.
21: I've been very proud of being part of the Tata family.
13: After four decades with the Tata Group, N. Chandrasekharan's Tata innings is now getting over. N. Chandrasekharan is set to step down as Tata Sons chairman after completing his current term. Chandra has decided not to seek reappointment after his term ends on February 20, 2027. The move sets the stage for a leadership transition at the top of the Tata Group, with the succession process expected to begin soon. Tata stocks are also likely to remain in focus as investors assess the implications of the leadership change. In his statement, Chandra said he would not seek another term and asked the board to decide on his successor at the earliest. He said the move was aimed at ensuring a smooth and proper leadership transition. The decision comes after the board failed to reach a resolution on his appointment nearly 6 months after its February 24 meeting. The reappointment proposal did not have unanimous support, with one board member withholding support. Chandra's exit comes at a critical juncture for Tata Sons and the wider Tata Group. The next chairman will have several key challenges on the table. These include turning around loss-making Air India, reducing losses in the group's digital businesses, and navigating the potential listing of Tata Sons. The group will also have to address the regulatory requirement around upper layer NBFC deregistration. Chandrasekharan's Tata journey spans four decades. He joined TCS as an engineer in 1987 and rose to become its CEO and MD in 2009. He joined the Tata Sons board in 2016 and took charge as chairman in 2017. Under his leadership, the Tata Group returned to aviation with the acquisition of Air India in 2022. His current term as Tata Sons chairman ends on February 20, 2027, marking the end of a decade at the helm of the group. The next chapter now rests with the successor and the challenges waiting at the top of Tata Sons. Bureau Report, Business Today Television.
1: A brand new airport built at the cost of thousands of crores and barely 2 months into commercial operations, waterlogging inside the premises of Noida's Jewar Airport is raising several question marks. The airport management says that the water was cleared within 30 minutes. But the bigger question is not about that. It's about the infrastructure itself. Take a look at this report.

0: को दिख जाएंगे, और जो गुजरने वाले यहाँ से दोपहिया वाहन है उनके लिए यह ज्यादा बड़ा खतरा है। जो चौपहिया वाहन है वो तो यहाँ से निकल जा रहे हैं तेजी से फर्राटा भर के, लेकिन दोपहिया वाहन जो है वो अगर इसमें पड़ते हैं तो फिर उनके सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये फ्लाईओवर के जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं वहीं पर ये गड्ढा बना हुआ है।
1: The potholes are not limited just to the flyover. The condition of the roads under the bridge are no different.
2: काफी टाइम होगा सर, गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
3: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की, कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं देता, पलटते हैं, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे।
1: The real question is, how does a road disintegrate so easily in less than 2 years? Why is there no proper maintenance? And who is sleeping at the wheel? With Ravish Pal Singh in Bhopal, Bureau Report, India Today.

0: पर्सन मांग कर ली है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार 50% मांग भी नहीं मान रही।
1: ये आंदोलन क्या आप हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों के खिलाफ ये आंदोलन है, पूरी जो सिस्टम है उनके खिलाफ आंदोलन है, हेमंत सोरेन खुद के खिलाफ है? क्योंकि मैंने देखा है कि आप तो शिब्बू सोरेन को बहुत मानते हैं, उनके पोस्टर्स रखे थे। इज दिस अगेंस्ट हेमंत सोरेन या पूरे सिस्टम या गवर्नमेंट के खिलाफ?
0: देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सिस्टम सिस्टम को सिखा रहे हैं, तो सिस्टम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और सिस्टम सुधार की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार सिस्टम सुधार में नाकाम साबित होगी, इतना हम सरकार के एजेंट जाएंगे। फिलहाल अभी तक हम लोग सरकार के विरोध में नारे तक नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर सरकार हमारे सिस्टम सुधार में नाकाम होगी तो बिल्कुल हम लोग सरकार पर फिर उठा फेंकने की बात करेंगे। जो सरकार किस काम की, जो युवाओं को संतुष्ट न कर पाए, आज मैं हॉस्पिटल के बेड के बिस्तर पे हूँ, लेकिन मेरा आत्मा, मेरा संघर्ष का संकल्प अभी भी धरना स्थल पे है, अभी भी आंदोलन स्थल पे है, और 11 दिन का भूख हड़ताल से मेरा आंदोलन का देरी से इतना शारीरिक पीड़ा नहीं है, इससे अधिक मेरा मानसिक पीड़ा है। मैं आंदोलन से इसलिए मैं आज हॉस्पिटल के प्रभारी को तो आवेदन भी लिखा है, मुझे सत्याग्रह आंदोलन स्थल जाने की अनुमति दिया जाए। आखिर हमको हॉस्पिटल में क्यों रखा गया है? या तो हॉस्पिटल में हमको रिपोर्ट दे कि भाई मेरा किडनी खराब है, मेरा लिवर खराब है, मेरा हार्ट खराब है, कि मेरा लंग्स में प्रॉब्लम है। अगर क्या प्रॉब्लम है, अगर वो रिपोर्ट नहीं दे सकती तो हमको तो आंदोलन स्थल भेजा जाए सबसे पहले, तो मेरा यही डिमांड है फिलहाल।
1: And of course, the audio you will guess is because it was in a hospital. You can watch the full interview on our website on India Today. Let me turn to the other big political story, because the Tamil Nadu government today passed an anti-delimitation resolution, with the resolution saying that they would like women's reservation within the existing 543 member parliament and no increase in the number of seats. The DMK, which was really the key party here, supported the government's resolution, but has put in certain terms and conditions that suggest that at a future date, they may well accept the centre's attempt to renew its delimitation effort. Take a look at this story.
2: மன்ற பேரவை ஒருமனதாக வலியுறுத்துகிறது.
3: நம்ம அந்த அதே பிரச்சனை குறித்து நானும் இது
4: the government will ensure that no state whether it's Kerala, Tamil Nadu, Karnataka
2: delimitation தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம்.
5: The Tamil Nadu Assembly passes a resolution on delimitation. The resolution was passed on three major points. It says the 543 Lok Sabha seats must remain fixed. There should be no change in the state-wise allocation of Lok Sabha seats, and 33% women's reservation should be provided in state assemblies.
2: தற்போதுள்ள மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையான 543 என்ற அளவிலேயே நிரந்தரமாக வைப்பதற்கும், மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டத்தினை அமுல்படுத்த மேலும் காலதாமதம் இல்லாமல் தற்போது 543 என்ற நிலையிலேயே மூன்றில் ஒரு பங்கு தொகுதி மகளிர் தொகுதிக்கு வருகின்ற 2029 பாராளுமன்ற தேர்தலில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற முன்மொழியும் தீர்மானிக்கப்பட்டுச்சு.
5: The Congress, the DMK and left parties supported the resolution.
6: திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 33% மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை நாங்கள் முழுமையாக ஆதரிக்கின்றோம், வரவேற்கின்றோம். ஒருவேளை மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்காக டீலிமிட்டேஷன் எக்ஸசைஸ் செய்யப்பட்டால் 1971 மக்கள் தொகை அடிப்படையிலேயே செய்ய வேண்டும்.
5: The AIADMK, PMK and BJP rejected the resolution.
7: இந்த சூழ்நிலையில் மத்திய அரசு கொண்டு வர உள்ள தொகுதி மறுவரையில் தமிழ்நாட்டிற்கு சாதகமா உள்ளதா பாதகமா உள்ளதா என்பது பற்றி எதுவுமே தெரியாத நிலையில் அரசியல் காரணங்களுக்காக தமிழக வெற்றி கழக அரசு கொண்டு வந்த இந்த தீர்மானத்தை

0: खत्म हो गया था, जहां तो लोग जल समाधि लगा रहे थे, पानी में बैठे थे, वो सब चले गए। इसका मतलब जो बाहर से पैसा आता है उसका मिसयूज होता है, कई बार उसकी इंटेंट ही गलत होती है। तो ये देखते लिए अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो
1: एंड
0: नया बिल
1: सिद्धार्थ
0: आ रहा है, ये
1: जी,
0: पुराने जो एक्सपीरियंस है इसमें जो लूप होल्स है उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लोग इसी तरह इन्वॉल्व होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ही इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो इसमें मुझे नहीं
1: क्योंकि
0: लगता कोई गलत
1: नहीं हो सकता है जेपीसी में ये
0: है।
1: सारे एस्पेक्ट्स निकल कर आएंगे, लेकिन ये
0: जी
1: इतना
0: हाँ
1: बवाल इस पर जो हो रहा है कि विपक्ष कह रहे हैं कि ये बिल वापस ले लेना चाहिए। अब देखते हैं जेपीसी में क्या निकल कर आता है। बट सिद्धार्थ, फॉर अ मोमेंट, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन फंडिंग ऑफ सर्टन एनजीओज इन दिस कंट्री दैट फ्यूल प्रोटेस्ट, वेदर इट वॉज द कांग्रेस गवर्नमेंट अर्लियर और अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट नाउ, रिमेंबर वॉट कार्लो लोम्बार्डी, दैट एनलिस्ट एंड एडवाइजर ऑन इंडिया इटली रिलेशन, सेड दैट 1983 यूएस क्रिएटेड वॉट वॉज नोन एज द नेशनल इंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी और NED। इट्स को फाउंडर एलन वाइनस्टीन, ही लेटर सेड दैट मच ऑफ वॉट द NED डिड वॉज वेरी सिमिलर टू वॉट CIA यूज टू डू 25 years अर्लियर, इंडिकेटिंग परहैप्स दैट फॉरन फंडेड एनजीओज मे बी यूज और कैन सर्व एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ कंट्रीज फॉरन पॉलिसी। इज दैट वन ऑफ द गवर्नमेंट्स की कंसर्न राइट नाउ?
2: Well, it is a concern, and I am reminded, Gaurav, and I am sure you reported and are recollecting that as well. The IB report in 2014-15, which was a 21-page report, and many of us reporters had access to it because it got leaked. And I remember the title, Concerted Efforts by Select Foreign-Funded NGOs to Take Down Indian Developmental Projects. That report also said that this could reduce India's growth, GDP growth by 100 basis points. So it is not as if there is not significant amount of internal research and intelligence and documentation of money coming in for one stated purpose and ending up for a completely different purpose. And no country worth its salt would allow foreign money. And remember, there is a disproportionate impact. People may not agree. Exchange rate, if you bring in $10 and the disproportionate impact due to the exchange rate in India is very, very significant. And therefore, yes, to completely say, oh, this is being targeted at a particular minority, I don't think it's fair. Yes, there is, of course, I would personally say that a redressal and appeal mechanism is very, very important. That is the core of law. You should have a right to appeal, and I hope the JPC will bring that in. And one more quick point, please remember the shoot and scoot point, Gaurav. Liability exists for years. In government service, liability exists after retirement. Directors' liability exists. There are draconian provisions. Why should an NGO which suddenly mops up, spends money, then 3 years later shuts down and runs away? We know that disappearing companies, such outfits. So these are all clauses that are aimed for a particular reason, Gaurav.
1: This is a story we'll be tracking very closely because national security is most important. But is national security being applied as, you know, a charade for the government to control NGOs as is being alleged? Perhaps all these aspects will come up at the JPC and we'll be tracking that story very closely. I want to thank all our guests. I want to shift focus to the other big story we're tracking here on India First. A quick break. On the other side, is Imran Khan, Pakistan's former Prime Minister and former World Cup winning captain, is he even alive? There are rumor mills in Pakistan are working overtime. That big story coming up. Stay with us.

0: क्या आप हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों के खिलाफ ये आंदोलन है, पूरी जो सिस्टम है उनके खिलाफ आंदोलन है, हेमंत सोरेन खुद के खिलाफ है? क्योंकि मैंने देखा है कि आप तो शिब्बू सोरेन को बहुत मानते हैं, उनके पोस्टर्स रखे थे, इज दिस अगेंस्ट हेमंत सोरेन या पूरे सिस्टम या गवर्नमेंट के खिलाफ?
1: देखिए, सबसे पहले तो भाई हम लोग सिस्टम को सिखा रहे हैं, तो सिस्टम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और सिस्टम सुधार की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार सिस्टम सुधार में नाकाम साबित होगी, इतना हम सरकार के एजेंट से आएंगे। फिलहाल अभी तक हम सरकार के विरोध में नारे तक नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर सरकार हमारे सिस्टम सुधार में नाकाम होगी तो बिल्कुल हम लोग सरकार इस सरकार पर फिर उठा फेंकने की बात करेंगे। वो सरकार किस काम की जो युवाओं को संतुष्ट न कर पाए, आज मैं हॉस्पिटल के बेड के बिस्तर पे हूँ, लेकिन मेरा आत्मा, मेरा संघर्ष का संकल्प अभी भी धरना स्थल पे है, अभी भी आंदोलन स्थल पे है, और 11 दिन का भूख हड़ताल से मेरा आंदोलन का देरी से इतना शारीरिक पीड़ा नहीं है, इससे अधिक मेरा मानसिक पीड़ा है। मैं आंदोलन से इसलिए मैं आज हॉस्पिटल के प्रभारी को तो आवेदन भी लिखा है, मुझे सत्याग्रह आंदोलन स्थल जाने की अनुमति दिया जाए। आखिर हमको हॉस्पिटल में क्यों रखा गया है? या तो हॉस्पिटल में हमको रिपोर्ट दे कि भाई हमारा किडनी खराब है, मेरा लिवर खराब है, मेरा हार्ट खराब है, कि मेरा लंग्स में प्रॉब्लम है, अगर क्या प्रॉब्लम है, अगर वो रिपोर्ट नहीं दे सकती तो हमको आंदोलन स्थल भेजा जाए सबसे पहले, तो मेरा यही डिमांड है। फिलहाल
0: And of course, the audio you will guess is because it was in a hospital. You can watch the full interview on our website on India Today. Let me turn to the other big political story, because the Tamil Nadu government today passed an anti-delimitation resolution, with the resolution saying that they would like women's reservation within the existing 543-member parliament and no increase in the number of seats. The DMK, which was really the key party here, supported the government's resolution, but has put in certain terms and conditions that suggest that at a future date, they may well accept the centre's attempt to renew its delimitation effort. Take a look at this story.
2: The government will ensure that no state, whether it's Kerala, Tamil Nadu, Karnataka,
3: delimitation தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம்.
4: The Tamil Nadu Assembly passes a resolution on delimitation. The resolution was passed on three major points. It says the 543 Lok Sabha seats must remain fixed. There should be no change in the state-wise allocation of Lok Sabha seats, and 33% women's reservation should be provided in state assemblies.
3: தற்போதுள்ள மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையான 543 என்ற அளவிலேயே நிரந்தரமாக வைப்பதற்கும், மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டத்தினை அமுல்படுத்த மேலும் காலதாமதம் இல்லாமல் தற்போது 543 என்ற நிலையிலேயே மூன்றில் ஒரு பங்கு தொகுதி மகளிர் தொகுதிக்கு வருகின்ற 2029 பாராளுமன்ற தேர்தலில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற முன்மொழியும் தீர்மானிக்கப்பட்டுச்சு.
4: The Congress, the DMK and left parties supported the resolution.
5: திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 33% மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை நாங்கள் முழுமையாக ஆதரிக்கின்றோம், வரவேற்கின்றோம். ஒருவேளை மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்காக டீலிமிட்டேஷன் எக்ஸசைஸ் செய்யப்பட்டால் 1971 மக்கள் தொகை அடிப்படையிலேயே செய்ய வேண்டும்.
4: The AIADMK, PMK and BJP rejected the resolution.
6: இந்த சூழ்நிலையில் மத்திய அரசு கொண்டு வர உள்ள தொகுதி மறுவரையில் தமிழ்நாட்டிற்கு சாதகமாக உள்ளதா பாதகமாக உள்ளதா என்பது பற்றி எதுவுமே தெரியாத நிலையில் அரசியல் காரணங்களுக்காக தமிழக வெற்றி கழக அரசு கொண்டு வந்த இந்த தீர்மானத்தை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்க்கின்றது. அதே நேரத்தில்
4: The DMK stand is crucial as far as passage of the delimitation bill by Lok Sabha is concerned.

0: पूरे सिस्टम या गवर्नमेंट के खिलाफ?
1: देखिए, सबसे पहले तो भाई हम लोग सिस्टम सिस्टम को शिकार हैं, तो सिस्टम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और सिस्टम सुधार की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार सिस्टम सुधार में नाकाम साबित होगी तो हम सरकार के एजेंट्स जाएंगे। फिलहाल अभी तक हम लोग सरकार के विरोध में नारे तक नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर सरकार हमारे सिस्टम सुधार में नाकाम होगी तो बिल्कुल हम लोग सरकार उस सरकार को फिर उठा सकने की बात करेंगे। जो सरकार किस काम की जो युवाओं को संतुष्ट न कर पाए, आज मैं हॉस्पिटल के बेड के बिस्तर पे हूँ, लेकिन मेरा आत्मा मेरा संघर्ष का संकल्प अभी भी धरना स्थल पे है, अभी भी आंदोलन स्थल पे है, और 11 दिन का भूख हड़ताल से मेरा आंदोलन का देरी से इतना शारीरिक पीड़ा नहीं है, इससे अधिक मेरा मानसिक पीड़ा है। मैं आंदोलन से इसलिए मैं आज हॉस्पिटल के प्रभारी को तो आवेदन भी लिखा है, मुझे सत्याग्रह आंदोलन स्थल जाने की अनुमति दिया जाए, और फिर हमको हॉस्पिटल में क्यों रखा गया है? या तो हॉस्पिटल में हमको रिपोर्ट दे कि भाई मेरा किडनी खराब है, मेरा लिवर खराब है, मेरा हार्ट खराब है, कि मेरा लंग्स में प्रॉब्लम है, अगर क्या प्रॉब्लम है, अगर वो रिपोर्ट नहीं दे सकती तो हमको आंदोलन स्थल भेजा जाए सबसे पहले, तो मेरा यही डिमांड है।
0: And of course, the audio you will guess is because it was in a hospital. You can watch the full interview on our website on India Today. Let me turn to the other big political story, because the Tamil Nadu government today passed an anti-delimitation resolution, with the resolution saying that they would like women's reservation within the existing 543-member parliament and no increase in the number of seats. The DMK, which was really the key party here, supported the government's resolution, but has put in certain terms and conditions that suggest that at a future date, they may well accept the centre's attempt to renew its delimitation effort. Take a look at this story.
2: அதே பிரச்சனை குறித்து நானும் இது
3: கவர்மெண்ட் will ensure that no state whether it's கேரளம் தமிழ்நாடு
4: delimitation தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம்
5: The Tamil Nadu Assembly passes a resolution on delimitation. The resolution was passed on three major points. It says the 543 Lok Sabha seats must remain fixed. There should be no change in the state-wise allocation of Lok Sabha seats, and 33% women's reservation should be provided in state assemblies.
4: தற்போதுள்ள மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையான 543 என்ற அளவிலேயே நிரந்தரமாக வைப்பதற்கும் மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டத்தினை அமல்படுத்த மேலும் காலதாமதம் இல்லாமல் தற்போது 543 என்ற நிலையிலேயே மூன்றில் ஒரு பங்கு தொகுதி மகளிர் தொகுதிக்கு வருகின்ற 2029 பாராளுமன்ற தேர்தலில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற முன்மொழியும் தீர்மானிக்கப்பட்டுச்சு.
5: The Congress, the DMK and left parties supported the resolution.
6: திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 33% மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை நாங்கள் முழுமையாக ஆதரிக்கின்றோம், வரவேற்கின்றோம். ஒருவேளை மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்காக டீலிமிட்டேஷன் எக்ஸசைஸ் செய்யப்பட்டால் 1971 மக்கள் தொகை அடிப்படையிலேயே செய்ய வேண்டும்.
5: The AIADMK, PMK and BJP rejected the resolution.
7: இந்த சூழ்நிலையில் மத்திய அரசு கொண்டு வர உள்ள தொகுதி மறுஅறையில் தமிழ்நாட்டிற்கு சாதகமா உள்ளதா பாதகமா உள்ளதா என்பது பற்றி எதுவுமே தெரியாத நிலையில் அரசியல் காரணங்களுக்காக தமிழக வெற்றி கழக அரசு கொண்டு வந்த இந்த தீர்மானத்தை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்க்கின்றது. அதே நேரத்தில்
5: The DMK stand is crucial as far as passage of the delimitation bill by Lok Sabha is concerned. Does the party's support for the resolution against delimitation mean that it has finally made up its mind? The answer is awaited. With Apurva Jayachandran, Anaga Keshav and Pramod Madhav, Bureau Report, India Today.